सुपर भात 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी एफएम शिमला से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई साल 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी एफएम शिमला है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रेले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया।

0: राष्ट्रपति क्रिस्टो डोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulis, in New Delhi today. Mr. Christodoulis arrived in New Delhi yesterday from Mumbai. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi

ज्ञान और भक्ति मार्ग की मीमांसा करते हुए काकभुशुंडी ने जहां ज्ञान को दीपक की संज्ञा दी, वहां दूसरी ओर भक्ति को ऐसी मणि बताया जो स्वयं प्रकाशित है। इस मणि का जिस हृदय में निवास होता है वो अपने आप अनन्य रूप से परम प्रकाशित हो जाता है। ये ऐसा धन है जिससे मोह रूपी दरिद्रता मिट जाती है। लोभ रूपी हवा उसे दीपक की भांति बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि तो स्वयं प्रकाश रूप है जिसे दीपक की भांति किसी साधन से प्रज्वलित नहीं किया जाता। जिनके हृदय में भक्ति का निवास होता है उनके समीप काम, क्रोध, लोभ और मोह नहीं आ सकते। भक्त के लिए विष भी अमृत के समान होता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अतः चतुर उन्हें जानना चाहिए जो इस अनुपम मणि को पाने का यत्न करते हैं, और इसे प्राप्त करना कष्टसाध्य नहीं होता। इसे प्राप्त करने की इच्छा करने वाले रामकथा, सत्संग, सुबुद्धि, विवेक और वैराग्य के द्वारा सहज ही इसे प्राप्त कर लेते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह और साथी। FM शिमला पर आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं एफएम शिमला के साथ, और एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं रीना वर्मा। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और आज से सभी सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटेंगे। नगर निगम महापौर और सहायक कर्मियों के बीच बातचीत में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कर्मचारियों को लिखित आश्वासन देते हुए कहा कि सभी सहमत मांगों को चरणबद्ध तरीकों से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार लगातार जारी है। इन चुनावों के लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में मतदाताओं को रिझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चंबा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले की 319 ग्राम पंचायतों में 3 चरणों में चुनाव होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां जारी है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ऑफ स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनाए गए मॉडल का अवलोकन किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्द ही हिमाचल से शहरी विकास विभाग, नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल कर्नाटक में शहरी विकास कार्यों का अध्ययन करने जाएगा और इन कार्यों से प्रेरणा लेकर इसके सफल मॉडल को हिमाचल में अपनाया जाएगा। न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: 7 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत

0: बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी एफएम शिमला और एफएम शिमला पर अब समय है चिंतन का।
3: मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें उत्तानपाद नरेश हुए। उनकी दो रानियां थीं, किंतु अपनी बड़ी रानी सुनीति पर नरेश का प्रेम कम ही था। वे छोटी रानी सुरुचि के वश में थे। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव खेलता हुआ आया और पिता की गोद में बैठ गया। छोटी रानी वहीं थी। उन्होंने 5 वर्ष के बालक ध्रुव का हाथ पकड़कर नरेश की गोद से नीचे उतार दिया और झिड़क कर बोली, ये आसन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुझे यहाँ बैठना हो तो भगवान का भजन करके मेरे गर्भ से जन्म ले। ध्रुव अंततः सम्राट का कुमार था। अपमान से क्षुब्ध

0: रोता हुआ वहां से चल पड़ा। पति प्रेम वंचिता रानी सुनीति ने हृदय पर पत्थर रखकर सब सुना। पुत्र को छाती से लगाकर रोती हुई बोली, बेटा मुझ अभागिन के गर्भ से जन्म लेकर सचमुच तुम भाग्यहीन हो गए हो। सचमुच यदि तुम उनके पुत्र उत्तम की भांति महाराज के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो पद्म प्लाश लोचन श्रीहरि के चरणों की आराधना करो। समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति का साधन भगवत भक्ति ही है। बालक ध्रुव को जैसे मार्ग मिल गया। उन्हें पता नहीं था कि भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे होती है, किंतु वे माता को प्रणाम करके घर से निकल पड़े। ध्रुव को कुछ पता हो या ना हो, ध्रुव जिसे पाने निकले थे उसे तो सब पता रहता है। कोई सचमुच उसे पाने चले और मार्ग ना मिले, ये संभव नहीं है। भगवान नारायण के मन के ही अंश हैं देवऋषि नारद जी। ध्रुव के वन में पहुंचते ना पहुंचते वीणा बजाते हुए उनके सम्मुख मार्ग में आ खड़े हुए। बालक ध्रुव ने देवऋषि को प्रणाम किया। देवऋषि ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, पुचकारा और सब बातें पूछकर समझाया, अभी तो तुम बच्चे हो, बालकों का क्या अपमान और क्या सम्मान। घर लौट चलो, मैं तुम्हारे पिता को समझा देता हूं। ये तपस्या और उपासना का मार्ग बड़ा कठोर है। समय आएगा जब तुम बड़े हो जाओगे तब ये सब भी कर लेना। ध्रुव बच्चे थे किंतु कच्चे नहीं थे। उनका निश्चय तो सम्राट कुमार का निश्चय था। बड़ी नम्रता से उन्होंने निवेदन किया, मुझे तो ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता पितामह या और किसी को भी नहीं मिला हो। ऐसा पद भी मुझे प्राप्त करना है केवल श्री हरि से। आपने कृपा करके दर्शन दिए तो अब इस उद्देश्य की सिद्धि का साधन भी बता दीजिए। देवऋषि प्रसन्न हो गए और कहने लगे, तुम्हारी माता ने तुम्हें ठीक मार्ग बतलाया है। किसी को कोई पुरुषार्थ अभीष्ट हो उसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन नारायण भगवान की आराधना ही है। देवऋषि ने कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और मथुरा जाकर भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। कहां तो महाराज उत्तानपाद ध्रुव को गोद से हटाए जाने पर चुप बैठे रहे और कहां अब वे ध्रुव के वन में जाने के समाचार से अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्हें भूख प्यास और निद्रा भी भूल गई। ध्रुव लौटे तो उन्हें सर्वस्व दे दें यही सोचने लगे। देवऋषि नारद ध्रुव को मथुरा भेजकर महाराज के पास आए और उन्हें आश्वासन दिया। ध्रुव मधुवन में पहुंचे। यमुना स्नान करके वे देवऋषि के उपदेश के अनुसार मंत्र जाप तथा भगवान ध्यान में जुट गए। एक महीने उन्होंने 3 दिन के अंतर से एक बार बेर और कैत खाने का नियम बनाया। दूसरे महीने वे प्रति छठे दिन सूखे तृण और वृक्ष से अपने आप गिरे पत्ते खा कर रहे। तीसरे महीने 9 दिन के अंतर से एक बार केवल जल पी लेते थे और चौथे महीने तो 12 दिन बीतने पर एक बार श्वास लेना मात्र उनका व्रत बन गया। चौथा महीना बीता और ध्रुव ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। एक पैर से निश्चल निष्पंद खड़ा वो क्षत्रिय कुमार अखंड ध्यान मग्न था। बादल गरजे, बिजली टूटी, ओले पड़े, सिंह और अजगर दहाड़ते फुंकारते आए, व्यर्थ था माया का ये सब प्रपंच। त्रिलोकीनाथ सम्मुख खड़े हैं, सर्वज्ञ प्रभु हंस पड़े और अपने निखिल वेदमय शंख का बालक के कपोल से स्पर्श कर दिया। सरस्वती जागृत हो गई, वाणी खुल पड़ी, ध्रुव स्तुति करने लगे। स्तवन के पश्चात प्रभु ने कहा, बेटा ध्रुव, जिस पद को तुम्हारे पिता या पितामह तक ने नहीं पाया है, जिसे और कोई भी नहीं पा सका, ये ध्रुवलोक तुम्हारा है। अभी तो तुम घर जाओ, पिता के बाद पैतृक सिंहासन को भूषित करना। धरा का राज्य भोग कर यहां का समय समाप्त होने पर तुम सशरीर उस मेरे दिव्य लोक में निवास करोगे। सप्तऋषि तथा समस्त तारक मंडल उस लोक की प्रदक्षिणा किया करेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचक स्वर डॉक्टर हुकम शर्मा के थे। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ और आइए अब सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आप सुनेंगे चौथे भाग का 27वां अध्याय। शीर्षक है संयम की ओर।

मैं पिछले प्रकरण में कह चुका हूँ कि आहार संबंधी कुछ परिवर्तन कस्तूरबाई की बीमारी में निमित्त हुए थे, पर अब तो दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की दृष्टि से आहार में परिवर्तन होने लगे। इनमें पहला परिवर्तन दूध छोड़ने का हुआ। मुझे पहले पहल रायचंद भाई से मालूम हुआ था कि दूध इंद्रिय विकार पैदा करने वाली वस्तु है। अन्नाहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकों के वाचन से इस विचार में वृद्धि हुई, लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया था तब तक मैं दूध छोड़ने का कोई खास इरादा नहीं कर सका था। ये चीज तो मैं बहुत पहले से समझने लगा था कि शरीर के निर्वाह के लिए दूध आवश्यक नहीं है, लेकिन वो झट से छूटने वाली चीज ना थी। मैं ये अधिकाधिक समझने लगा था कि इंद्रिय दमन के लिए दूध छोड़ना चाहिए। इन्हीं दिनों मेरे पास कलकत्ते से कुछ साहित्य आया जिसमें गाय भैंस पर ग्वालों द्वारा किए जाने वाले क्रूर अत्याचारों की कथा थी। इस साहित्य का मुझ पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। जिन दिनों हम साथ रहते थे उन्हीं दिनों दूध संबंधी उक्त चर्चा हुई थी। मिस्टर किलनबेक ने सलाह दी, दूध के दोषों की चर्चा तो हम प्रायः करते ही हैं, तो फिर हम दूध छोड़ क्यों ना दें, उसकी आवश्यकता तो है ही नहीं। उनकी इस राय से मुझे सानंद आश्चर्य हुआ। मैंने इस सलाह का स्वागत किया और हम दोनों ने उसी क्षण टॉलस्टॉय फॉर्म पर दूध का त्याग किया। ये घटना सन 1892 में घटी। इतने त्याग से मुझे शांति न हुई। दूध छोड़ने के कुछ ही समय बाद केवल फलाहार के प्रयोग का भी हमने निश्चय किया। फलाहार में भी जो सस्ते से सस्ते फल मिले उनसे ही अपना निर्वाह करने का हमारा निश्चय था। गरीब से गरीब आदमी जैसा जीवन बिताता है वैसा ही जीवन बिताने की उमंग हम दोनों को थी। हमने फलाहार की सुविधा का भी खूब अनुभव किया। फलाहार में अधिकतर चूल्हा जलाने की आवश्यकता ही ना होती थी। बिना किसी मूंगफली, केले, खजूर, नींबू और जैतून का तेल, ये हमारा साधारण आहार बन गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखने वालों को यहाँ एक चेतावनी देने की आवश्यकता है। यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्य के साथ आहार और उपवास का निकट संबंध सूचित किया है, तो भी ये निश्चित है कि उसका मुख्य आधार मन पर है। मैला मन उपवास से शुद्ध नहीं होता, आहार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मन का मैल तो विचारे से, ईश्वर के ध्यान से और आखिर ईश्वरी प्रसाद से ही छूटता है। अतएव जो लोग ये कहते हैं कि संयमी के लिए आहार की मर्यादा की अथवा उपवास की आवश्यकता नहीं है, वे उतनी ही गलती पर हैं जितने आहार तथा उपवास को सर्वस्व मानने वाले। मेरा अनुभव तो मुझे ये सिखाता है कि जिसका मन संयम की ओर बढ़ रहा है उसके लिए आहार की मर्यादा और उपवास बहुत मदद वाले होते हैं। इनकी सहायता के बिना मन को निर्विकारता असंभव प्रतीत होती है।

साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आपने सुना चौथे भाग का 27वां अध्याय, शीर्षक था संयम की ओर। और आइए अब सुनते हैं गांधी जी का प्रिय राम भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा, प्रस्तुत करता थे डॉक्टर हुकम शर्मा। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM।

0: हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए।
1: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हमको मोहब्बत करेगा।
0: FM

ये है आकाशवाणी एफएम शिमला एफ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी सुनने वालों को। मैं हूँ आज आपके साथ डिंपल ठाकुर, और अगले कुछ पल हम और आप साथ में एंजॉय करने वाले हैं कुछ फिल्मी नगमे और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए एफएम शिमला पर। इस वक्त आपका अपना कार्यक्रम लेकर हम आए हैं, गुड मॉर्निंग शिमला।

0: ज़रदोज़ी लम्हे, यानी कि वो पल, वो लम्हे जो ज़िंदगी की साधारण चादर पर सुनहरी कढ़ाई की तरह सज जाते हैं। गुड मॉर्निंग शिमला, आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। और वैसे देखा जाए तो सुबह सुबह का ये जो समय होता है वो समय भी बड़ा दिलचस्प होता है, क्योंकि इस समय ना बीता हुआ पल, बीता हुआ दिन सामने होता है और ना ही पूरा आने वाला दिन। बस एक नया पन्ना खुला होता है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं शायद उम्मीद भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। वो ज़ोर से चिल्लाकर नहीं कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, वो बस धीरे से दिल में एक जगह बना लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी ठंडी हवा बिना आवाज़ के गुजर जाती है, जैसे आसमान चुपचाप रंग बदलता है, वैसे ही उम्मीद भी इंसान के भीतर बिना शोर किए बिल्कुल चुपचाप काम करती रहती है।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: और कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी बदला नहीं होता है, फिर भी अचानक से मन कहता है नहीं नहीं अभी सब ख़त्म होने जैसा नहीं है, और बस वहीं से उम्मीद शुरू होती है। तो आज के दिन का हमारे सुनने वालों के लिए बस यही मैसेज कि पुरानी बातों का बोझ थोड़ा हल्का करिए और दिल में एक छोटी सी जगह आज के अच्छे पलों के लिए छोड़ जाइए। गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम, इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1936 में लॉर्ड ब्रेबॉर्न ने मुंबई में ब्रेबॉर्न स्टेडियम की नींव रखी। ये देश का पहला स्टेडियम था। 1988 की बात करें तो भारत ने स्वदेश में ही विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण किया। इसके अलावा 22 मई के दिन ही भारत की बछेंद्री पॉल दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर पहुंची थी और इस कारनामे को अंजाम देने वाली वो देश की पहली महिला पर्वतारोही है। पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक इन्हें कहा जाता है। उनकी दूरदर्शिता और वैचारिकता के सैकड़ों एग्जाम्पल हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलेंगे। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राजा राम मोहन राय का जन्म आज ही की तारीख यानी कि 22 मई को ईयर 1772 में हुआ था, बंगाल के हुगली जिले में राधानगर गांव में। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और भारत की स्वतंत्रता में आज़ादी की लड़ाइयों के साथ साथ उन्होंने समाज में फैली कई तरह की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा समेत कई कुप्रथाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। भारतीय इतिहास में उनकी पहचान सती प्रथा के विरोध करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज है। आप सुन रहे हैं इस वक्त गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम एफएम शिमला पर।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं,
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। दोस्तों, हर तारीख अपने भीतर कई कहानियां समेटे होती है। कुछ किस्से ऐसे जो वक्त के साथ इतिहास बन गए और कुछ पल ऐसे जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी, और ऐसे ही कुछ इतिहास के खास पलों को हम इस प्रोग्राम में आपके साथ साझा करते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला एफएम शिमला पर। और आज विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हर साल 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस की शुरुआत हुई थी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी 1993 में। पहले इस दिन को मनाया जाता था 29 दिसंबर को, लेकिन साल 2000 से इस दिन को 22 मई को मनाने का फैसला लिया गया। 22 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता समझौते का मसौदा तैयार हुआ था। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना।

ताकि हम समझ सकें कि अगर जंगल, नदियाँ, पेड़ पौधे और जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे तभी इंसान का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो आज इस दुनिया में कई जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर है, जंगल लगातार कम हो रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही है और बदलता मौसम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। तो ऐसे में हमारी छोटी छोटी आदतें भी इस प्रकृति में बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे कि पानी जितना हम यूज़ करना चाहते हैं उतना ही यूज़ करें, एक्स्ट्रा पानी यूज़ ना करें, पानी को बेवजह ना बहाएं और प्लास्टिक का कम यूज़ करें, इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दें। और दूसरा है पेड़ लगाना और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील रहना। क्योंकि जो प्रकृति है वो हमारे लिए सिर्फ संसाधन नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है।

तो क्यों ना इस दिन हम सभी मिलकर एक छोटा सा संकल्प ज़रूर लें कि धरती को जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए और ज़्यादा जो है हम हरा भरा रखेंगे और सुंदर और सुरक्षित भी बना के रखेंगे।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी एफएम शिमला। आपको बता दें कि सुबह 8:30 पर एफएम न्यूज हेडलाइंस आप सुन सकते हैं और इसके अलावा 9:57 पर भी आप सुन सकते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस। नए और पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए फिल्म संगीत में। दोपहर 12:10 पर, सुबह 8:45 पर, दिन में 3:10 पर, 4 और 8:30 पर। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कुदरत के रंग कार्यक्रम और आज सुबह 10 से 11 के मध्य संगम कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम सुबह 11:05 पर आप सुन पाएंगे और 11:30 पर सुनिएगा पहाड़ी संगीत। महिला सम्मेलन प्रोग्राम आप सुनेंगे दोपहर 12:20 पर और आज 1:10 पर म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम।

0: सुनते रहिए एफएम शिमला का प्रसारण। और एफएम शिमला पर अब समय है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं रीना वर्मा। शिमला शहर से भीड़ को कम करने और सुंदर बनाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, जिसके तहत अनावश्यक तारों के जाल से मुक्त करने के लिए डक्ट का निर्माण किया जा रहा है और अब शहर में आईजीएमसी के पास अंडरपास बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर को सुंदर, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर्यटन बढ़ सके। शिमला जिला में रोहड़ू नगर परिषद के लिए आज मतदान हो रहा है। नगर के 9 वार्डों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से आरंभ हुआ है, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। मतदान के तुरंत बाद आज ही मतगणना उपमंडलाधिकारी कार्यालय के चांचल सम्मेलन में होगी। विशेष बात है कि नगर परिषद रोहड़ू चुनाव इस बार पूर्णतः महिला पोलिंग दलों द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। यहां 9 वार्डों के लिए 14 पोलिंग पार्टियां और मतगणना कार्य के लिए 6 महिला दल कार्य कर रहे हैं। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलायंस एयर ने शिमला दिल्ली रूट पर सप्ताह में 7 दिन विमान सेवा संचालित करने का फैसला लिया है। कंपनी की ओर से जारी नए शेड्यूल के अनुसार शिमला धर्मशाला रूट पर भी अब हफ्ते में 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक रोजाना फ्लाइट संचालित होगी। अभी इस रूट पर रविवार और मंगलवार को उड़ान सेवा बंद रहती थी। शिमला शहर में पिछले 7 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और आज से सभी सफाई कर्मचारियों अपने काम पर लौटे हैं। नगर निगम महापौर और सहायक कर्मियों के बीच हुई बातचीत में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण और सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से

0: बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल

0: 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्ययोजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business

0: CSK were officially eliminated from the season of IPL after finishing the league stage with just 12 points. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, CSK were bundled out for just 140 runs in 13.4 overs. Shivam Dubey was the top scorer with 47 runs. For Gujarat Titans, Mohammad Siraj, Rashid Khan and Kagiso Rabada each took 3 wickets. Siraj was just player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit.
1: Thank you, Pramod. Explore alternative energy sources, PM tells government amid West Asia crisis, headlines the Indian Express, while the Hindustan Times headlines Reforms, Delivery, West Asia in Focus as PM meets ministers. And the Statesman headlines, PM Modi chairs high-level governance review meeting amid global concerns. The Asian Age headlines, first coalition government in Tamil Nadu in 74 years, 23 join cabinet, while the Times of India says, Vijay expands Tamil Nadu cabinet with 7 Dalit ministers, Congress back in government after 59 years. Almost all newspapers carry the story of the India-Africa-Delhi summit being postponed due to the Ebola crisis. The Tribune headlines, Ebola scare delays India-Africa summit. Most papers cover the story of Hamza Burhan, a key figure linked to the 2019 Pulwama attack, which killed 40 CRPF jawans being shot at in POK. The Hindu, in its editorial titled Castaway, writes that people must have the option to state they are casteless in the census. The paper adds that the Supreme Court was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, which is part of the ongoing census 2027. The Chief Justice of India remarked that any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare. And finally, the Statesman on its front page says, ahead of Nautapa, plain simmer, but some respite around May 29th. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the June 1st, postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RJ Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी एफएम शिमला. आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस.
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं रीना वर्मा. शिमला शहर से भीड़ को कम करने और सुंदर बनाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, जिसके तहत अनावश्यक तारों के जाल से मुक्त करने के लिए डक्ट का निर्माण किया जा रहा है और शहर में आईजीएमसी के पास अंडरपास बनाने के निर्देश दिए गए हैं. ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर को सुंदर, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर्यटन बढ़ाया जा सके. शिमला जिला के रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान हो रहा है. नगर के 9 वार्डों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से आरंभ हुआ है, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा. मतदान के तुरंत बाद आज ही मतगणना उपमंडलाधिकारी कार्यालय के चांशल सम्मेलन में होगी. विशेष बात है कि नगर परिषद रोहडू चुनाव इस बार पूर्णतः महिला पोलिंग दलों द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है. यहां 9 वार्डों के लिए 14 पोलिंग पार्टियां और मतगणना कार्य के लिए 6 महिला दल कार्य कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के बीच आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है. राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे से आयोजित होने वाली इस बैठक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की पूर्व सहमति से ही जनहित और प्रशासनिक मामलों से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे. बैठक में आम जनता से जुड़े और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या

0: को देखते हुए अलायंस एयर ने शिमला दिल्ली रूट पर सप्ताह के 7 दिन विमान सेवा संचालित करने का फैसला लिया है। कंपनी की ओर से जारी नए शेड्यूल के अनुसार शिमला धर्मशाला रूट पर भी अब हफ्ते में 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक रोजाना फ्लाइट संचालित होगी। अभी इस रूट पर रविवार और मंगलवार को उड़ान सेवा बंद रहती थी। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने रेणुका जी बांध प्रबंधन की विस्थापितों की मांगों को लगातार अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने उठा रहे हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में आज दिन की शुरुआत बादलों के साथ हुई है। सुबह से चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश में कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। FM न्यूज़ हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा

0: संघर्ष समिति ने रेणुका जी बांध प्रबंधन की विस्थापितों की मांगों को लगातार अनदेखा करने का आरोप लगाया है। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि वे पिछले 17 वर्षों से अपनी मांगों को प्रबंधन के सामने उठा रहे हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में आज दिन की शुरुआत बादलों के साथ हुई है। सुबह से चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश में कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। FM न्यूज़ हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आइए अब सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम।

आशा कंवर की आवाज़ में अभी आपने ये लोकगीत सुना। लोक संगीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला से, और कार्यक्रम में आइए अब अगला लोकगीत सुनते हैं धर्मपाल भारद्वाज की आवाज़ में। आप बस यूं ही हमारे साथ सुनते रहिए, बने रहिए FM शिमला के साथ।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में अभी बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
1: FM।

अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब एफएम शिमला पर समय हो चला है सुरों और संगीत के उस सफर का, जहां हर धुन दिल की बात कहती है और हर गीत किसी याद को फिर से जगा देता है। जी हाँ, शुरू हो गया है आपका अपना कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दिल फिल्म का ये सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत। लम्हे फिल्म से ये गाना हमने आपके लिए लिया है और इस गाने में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और हरिहरन की।

0: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
1: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
2: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको।

अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और चलिए अब आपको बता दें कि आज आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से कौन से मुख्य मुख्य कार्यक्रमों को आप किस समय पर सुन सकते हैं। बता दें आपको, आज सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर 2026 में भारत के माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह का संबोधन। और 5:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी ये प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। सुबह 9:30 पर सुरबेला कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चमनलाल वर्मा से राग भैरव पर गायन। 10 बजे सुनिएगा रिमझिम कार्यक्रम। 10:30 पर आज आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:10 पर और शाम 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत। दोपहर 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। और सैनिकों के लिए कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:10 का।

दोपहर 2 बजे सुनहरी किरणें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कीवी के बागीचों के कार्य और सायं 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिएगा दलहनी फसलों की उन्नत किस्में, इस विषय पर चर्चा। दोपहर 2:30 पर स्पीति कार्यक्रम सुन सकते हैं आप और 3:05 पर सुनिएगा सामयिक चर्चा। दोपहर बाद 4:20 पर आप सुनेंगे आज सिरमौरी कार्यक्रम। 4:50 पर सुनिएगा कुछ महासुई लोकगीत। 5:50 पर भी आप हिमाचली लोकगीतों का आनंद उठा सकते हैं लोकगीत कार्यक्रम में। 6:06 पर बिलासपुरी कार्यक्रम और 6:35 पर आज आप सुनेंगे कुल्लवी कार्यक्रम। शाम 8 बजे सुनिएगा धारा रे गीत कार्यक्रम। सुगम संगीत आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:15 पर आनंद लीजिए दिलकश गजलों का गुलदस्ता कार्यक्रम में। 10 बजे विज्ञान जगत कार्यक्रम और 10:30 पर सुनिएगा सुरबहार कार्यक्रम में कुछ पुराने फिल्मी नगमे। तो ये है वो मुख्य कार्यक्रम जो आज आप सुनने वाले हैं आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से। और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। और अभी आप कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा। हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH पर भी उपलब्ध है।
1: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
2: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
1: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भाखड़ा बांध का दौरा कर बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच उत्तरदायी जल प्रबंधन का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हर वर्ग के हित में किए जा रहे कार्यों के दम पर नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान जारी, महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है मतदान प्रक्रिया का संचालन। प्रदेश उच्च न्यायालय ने आउटसोर्स भर्तियों को युवाओं के वैधानिक अधिकारों का बताया हनन। प्रदेश के कई भागों में हल्की वर्षा से तापमान में मामूली गिरावट, भीषण गर्मी व लू से मिली कुछ राहत। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बिलासपुर जिला में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा बांध का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। उन्होंने बिजली उत्पादन मशीनरी का अवलोकन किया और इंजीनियरिंग व रखरखाव कर्मचारियों की तकनीकी विशेषज्ञता और समर्पण की सराहना की। राज्यपाल ने जल संरक्षण और इस कीमती प्राकृतिक संसाधन के उत्तरदायी प्रबंधन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इसकी बेहद आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि कृषि और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में इस बांध की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने 25 शहरी निकायों में जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा पर लोगों के हितों को अनदेखा करने

0: का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार से प्रदेश के आपदा प्रभावितों को एक बीघा जमीन भी नहीं दिलवा पाई।
1: तो ये बीजेपी को हिमाचल के लोग वोट क्यों डाले? हमें इसलिए डाल रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, शिक्षा के स्तर में हमने सुधार किया, हमने हेल्थ में सुधार किया। हम आज किसान को अगर गेहूँ पैदा करता 80 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, 80 रुपये किलो जौ खरीद रहे हैं, 50 रुपये किलो मक्की खरीद रहे हैं, 63 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं। हम लोगों की रूरल इकोनॉमी को विकसित कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर जगह हेलीपोर्ट बना रहे हैं, सारी जगह हम लोगों ने कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो लोग क्यों हराएंगे?
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के बीच आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की पूर्व सहमति से ही जनहित और प्रशासनिक मामलों से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। बैठक में आम जनता से जुड़े और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। शिमला जिला में रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान हो रहा है। कुल 9 वार्डों के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। मतदान के तुरंत बाद आज ही मतगणना होगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: विशेष बात यह है कि नगर परिषद रोहडू के सभी मतदान केंद्रों का संचालन इस बार पूर्ण रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जो प्रदेश व देश स्तर पर एक अनूठी व प्रेरणादायी पहल है। इसके लिए सभी वार्डों में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए 14 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है, जिनमें 80 महिला कर्मचारी शामिल हैं। ये महिला कर्मचारी केवल मतदान प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मतगणना की जिम्मेदारी भी निभाएंगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इस वर्ष दिवस का विषय वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है, जो व्यापक वैश्विक लक्ष्यों से स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक कार्रवाई की ओर बदलाव को दर्शाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पर कहा है कि जैव विविधता की रक्षा करना न केवल एक वैश्विक प्रतिबद्धता है, बल्कि समुदायों, संस्थानों और सरकारों द्वारा साझा की जाने वाली एक स्थानीय जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि इस दिन भारत अपने स्थानीय संरक्षण के नायकों को सम्मानित करता है, जो अक्सर गुमनाम नायक होते हैं। उन्होंने कहा कि शहरीकरण में वृद्धि के बीच भारत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से प्रकृति अनुकूल शहरों को बढ़ावा दे रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स भर्तियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि खाली पदों को नियमित रूप से भरने के बजाय बैकडोर एंट्री के जरिए नियुक्तियां की जा रही हैं, जो युवाओं के वैधानिक अधिकारों का हनन और उनका शोषण है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रधान वित्त सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एलायंस एयर ने शिमला दिल्ली रूट पर सप्ताह के 7 दिन विमान सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। कंपनी की ओर से जारी नए शेड्यूल में भारतीय विमानपतन प्राधिकरण शिमला एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई है। अभी तक मंगलवार को इस रूट पर उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं थी। नए शेड्यूल के अनुसार शिमला धर्मशाला रूट पर भी अब हफ्ते में 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक रोजाना फ्लाइट संचालित होगी। पहले इस रूट पर रविवार और मंगलवार को उड़ान सेवा बंद रहती थी। वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचते हैं, ऐसे में रविवार को भी दिल्ली शिमला दिल्ली रूट पर विमान सेवा संचालित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति में हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम के इस बदले मिजाज से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर

0: अन्य जिलों में आज और कल आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार द्वारा देश में सर्वाइकल कैंसर को रोकने और महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष की किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका निशुल्क लगाया जा रहा है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है।
1: स्वास्थ्य विभाग चंबा को पहले चरण में 4500 बेटियों को HPV वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया था और ये लक्ष्य समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। रोजाना ये वैक्सीन फील्ड स्तर पर और अस्पतालों में बेटियों को लगाई जा रही है। इस टीकाकरण अभियान के तहत अभिभावकों को अपनी बेटियों का रजिस्ट्रेशन UWIN पोर्टल पर करना होगा, जिससे टीकाकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। इस टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों पर विराम लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये टीका स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए अभिभावक अपनी बेटियों को समय रहते ये टीका लगवाएं ताकि भविष्य में इस जानलेवा बीमारी से बचाव संभव हो सके। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। मौसम से जुड़ी खबर को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल के 6 जिलों में लू का प्रकोप, आज और कल कई क्षेत्रों में बारिश व अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, उफ ये गर्मी, 5 जिलों में लू चलने से छूटे पसीने। जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, तपते हिमाचल पर आज गिरेंगी फुहारें। दैनिक जागरण की एक खबर है, पंचायत चुनाव से पहले बिलासपुर में 50 बैलेट पेपर गायब। दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, बद्दी नालागढ़ रोड निर्माण में हो रही देरी के बारे में जवाब दें NHAI। देश के बेस्ट 100 DM में हिमाचल के 5 DC को मिली जगह, पंजाब केसरी की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भाखड़ा बांध का दौरा कर बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच उत्तरदायी जल प्रबंधन का किया आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हर वर्ग के हित में किए जा रहे कार्यों के दम पर नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान जारी, महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है मतदान प्रक्रिया का संचालन। प्रदेश उच्च न्यायालय ने आउटसोर्स भर्तियों को युवाओं के वैधानिक अधिकारों का हनन बताया। और प्रदेश के कई भागों में हल्की वर्षा से तापमान में मामूली गिरावट, भीषण गर्मी व लू से मिली कुछ राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
4: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दिवा...

आकाशवाणी एफएम शिमला, आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जब भी दिल थोड़ा थक जाए, जब जिंदगी की भाग दौड़ शोर मचाने लगे, तो इंसान तलाशता है एक ऐसी जगह जहां हवा में सुकून हो, जहां पहाड़ बातें करते हो, नदियों की कलकल मन को संगीत सुनाए, और ऐसी ही अनगिनत खूबसूरत जगहों से सजा है हमारा हिमाचल। जहाँ पर कुदरत के अनेकों रंग आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं रंगों से सराबोर रहता है का

एफएम शिमला पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। दोस्तों, हिमाचल सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी वादियों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये प्रदेश अपनी समृद्ध विरासत हेरिटेज के लिए भी पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखता है। यहाँ की हवाओं में इतिहास बसता है, पुराने मंदिरों की घंटियों में सदियों की आस्था सुनाई देती है और पहाड़ों के बीच बसे गांव आज भी अपनी परंपराओं को संजोए हुए हैं। तो अगर बात करें हिमाचल की ऐतिहासिक धरोहरों की, तो राजधानी शिमला का नाम सबसे पहले आता है। ब्रिटिश काल में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। आज भी यहाँ मौजूद पुरानी इमारतें उस दौर की कहानी कहती है। शिमला स्थित वॉइस रिगल लॉज, जिसे आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। बता दें आपको कि इस लॉज का निर्माण 1886 और 1888 के बीच भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में किया गया था। इसे वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा जैकोबेथन शैली में डिज़ाइन किया गया था और स्थानीय बलुआ पत्थर से बनाया गया था। ये लॉज 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने तक विभिन्न वायसराय के निवास के रूप में कार्य करता रहा है।

और शिमला की पहाड़ियों पर स्थित ये ऐतिहासिक भवन सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर इतिहास की कई परतें छुपी हुई हैं। आज यहाँ आने वाले पर्यटक ब्रिटिश काल की शानदार वास्तुकला, लकड़ी से बने भव्य हॉल, पुरानी सीढ़ियाँ और उस दौर के डिज़ाइन को करीब से देख सकते हैं। तो अगर आपका भी किसी ऐसी जगह पर घूमने का मन है जहाँ पर कुछ इतिहास की चीज़ों को आप देख सके, कुछ सर्च करना चाहते हैं आप, तो एडवांस स्टडी आपके लिए एक बहुत

अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ का विशाल लॉन और चारों तरफ फैले देवदार के पेड़ शिखर की सुंदरता को और भी खास बना देते हैं। ये भवन आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के रूप में कार्य करता है, जहाँ देश प्रदेश के शोधकर्ता इतिहास, संस्कृति, समाज और साहित्य जैसे विषयों पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। और सबसे खास बात यहाँ की ये है कि ये कुदरत और इतिहास दोनों को एक साथ जोड़े हुए हैं, और दोनों चीज़ें आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। एक तरफ अंग्रेजी दौर की विरासत और दूसरी तरफ शिमला की ठंडी हवाएं और हरियाली, मानो इतिहास आज भी वहीं ठहरा हुआ है।

कुदरत के रंगी कार्यक्रम आप सुन रही हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको बता दें यहाँ पर गाइडेड

टूर्स भी करवाए जाते हैं और जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। टूर के दौरान पर्यटक भवन की शानदार लकड़ी की कारीगरी, भव्य सीढ़ियाँ, पुराने ब्रिटिश वास्तुकला और विशाल लॉन को करीब से आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि एडवांस स्टडी जो है मंडे और नेशनल हॉलीडे को छोड़कर आमतौर पर सुबह 9:30 बजे से यानी कि 9:30 बजे से 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और एक और खास बात इससे रिलेटेड यह है कि ये भवन भारत की शुरुआती उन इमारतों में माना जाता है जहां 1888 के समय में ही बिजली की सुविधा मौजूद थी। देवदार के घने पेड़ों के बीच खड़ी ये इमारत आज भी शिमला की शान और हिमाचल की ऐतिहासिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा मानी जाती है।

तो जब भी आप शिमला घूमने आए या आप शिमला में ही रहते हैं, शिमला के आसपास अभी आप हैं, तो एडवांस स्टडी जाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये ऐतिहासिक भवन शिमला के ऑब्जर्वेटरी हिल क्षेत्र में स्थित है और शहर के मुख्य बस स्टैंड टूटीकंडी यानी कि ISBT से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप शिमला रेलवे स्टेशन या पुराने बस स्टैंड के पास है तो यहाँ तक टैक्सी या लोकल बस के माध्यम से आसानी से यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वॉक करना चाहते हैं, चलना आपको काफ़ी पसंद है बजाय गाड़ी में सफ़र करने के, तो आप यहाँ पर वॉक का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में आपको जो ठंडी ठंडी छांव, ठंडी ठंडी हवा खास करके इन गर्मियों के दिनों में मिलेगी। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए FM शिमला के साथ और सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए हम तो

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने रेडियो सेट्स पर इस वक्त आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं रीना वर्मा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बिलासपुर जिला में स्थित भाखड़ा बांध का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। राज्यपाल ने जल संरक्षण और इस कीमती प्राकृतिक संसाधन के उत्तरदायी प्रबंधन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इस बांध की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिमला शहर से भीड़ को कम करने और सुंदर बनाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, जिसके तहत अनावश्यक तारों के जाल से मुक्त करने के लिए डक्ट का निर्माण किया जा रहा है और अब शहर में आईजीएमसी के पास अंडरपास बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर को सुंदर, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने की जरूरत

0: है ताकि यहाँ पर्यटन बढ़ सके। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी प्रदेशवासियों से मिलकर प्रकृति के संरक्षण, पर्यावरण के संवर्धन व जैव विविधता की रक्षा हेतु जागरूकता, जिम्मेदारी और सामूहिक सहभागिता की अपील की है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स भर्ती को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रधान वित्त सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। शिमला जिला में रोहड़ू नगर परिषद के लिए आज मतदान हो रहा है। नगर के 9 वार्डों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हुआ है, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 9 बजे तक रोहड़ू में 21% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के तुरंत बाद आज ही मतगणना उपमंडलाधिकारी कार्यालय के चांशल सम्मेलन कक्ष में होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के बीच आज राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली बैठक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की पूर्व सहमति से ही जनहित और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। बैठक में आम जनता से जुड़े और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में आज दिन की शुरुआत बादलों के साथ हुई है। सुबह से चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। FM न्यूज़ हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

और एफएम शिमला पर अब समय है संगीत के उस खूबसूरत सफ़र का जहां दो आवाज़ें मिलकर बनाती है एहसासों का सबसे प्यारा संगम। तो लीजिए सुनिए संगम कार्यक्रम में सबसे पहले ये गाना जो कि है शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हमको दीवाना कर गए।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: आपका गांव है आपका गर्व। इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का गीत एंजॉय किया। और कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं, अलका याग्निक का साथ दिया है उदित नारायण ने और फिल्म का नाम है कौन है जो सपनों में आया।

और अब कार्यक्रम में प्ले कर रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी सॉन्ग लज्जा फिल्म से। आप बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने 25 शहरी निकायों में जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा पर लोगों के हितों को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार से प्रदेश के आपदा प्रभावितों को एक बीघा जमीन भी नहीं दिलवा पाई।
3: ये बीजेपी को हिमाचल के लोग वोट क्यों डाले? हमें इसलिए डाल रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, शिक्षा के स्तर में हमने सुधार किया, हमने हेल्थ में सुधार किया। हम आज किसान को अगर गेहूँ पैदा करता 80 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, 80 रुपये किलो जौ खरीद रहे हैं, 50 रुपये किलो मक्की खरीद रहे हैं, 63 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं। हम लोगों की रूरल इकोनॉमी को विकसित कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर जगह हेलीपोर्ट बना रहे हैं, सारी जगह हम लोगों ने कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो लोग क्यों हराएंगे?
2: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के बीच आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की पूर्व सहमति से ही जनहित और प्रशासनिक मामलों से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। बैठक में आम जनता से जुड़े और प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। शिमला जिला में रोहडू नगर परिषद के लिए आज मतदान हो रहा है। कुल 9 वार्डों के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 9 बजे तक 21.7% मतदान दर्ज किया गया है। मतदान के तुरंत बाद आज ही मतगणना होगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
4: विशेष बात यह है कि नगर परिषद रोहडू के सभी मतदान केंद्रों का संचालन इस बार पूर्ण रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जो प्रदेश व देश स्तर पर एक अनूठी व प्रेरणादायी पहल है। इसके लिए सभी वार्डों में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए 14 पोलिंग पार्टियों का गठन किया गया है, जिनमें 80 महिला कर्मचारी शामिल हैं। ये महिला कर्मचारी केवल मतदान प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मतगणना की जिम्मेदारी भी निभाएंगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को हाईजैक करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में भाजपा को मिली भारी सफलता से कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है और अब चुनावों के नियमों में बदलाव कर जनादेश को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालकर अपने पक्ष में मतदान करवाने का आरोप भी लगाया। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स भर्तियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि खाली पदों को नियमित रूप से भरने के बजाय बैकडोर एंट्री के जरिए नियुक्तियां की जा रही हैं, जो युवाओं के वैधानिक अधिकारों का हनन और उनका शोषण है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव और प्रधान वित्त सचिव को अगली

0: सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एलायंस एयर ने शिमला दिल्ली रूट पर सप्ताह के सातों दिन विमान सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। कंपनी की ओर से जारी एक शेड्यूल में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शिमला एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई है। अभी तक मंगलवार को इस रूट पर उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं थी। नए शेड्यूल के अनुसार शिमला धर्मशाला रूट पर भी अब हफ्ते में 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक रोजाना फ्लाइट संचालित होगी। पहले इस रूट पर रविवार और मंगलवार को उड़ान सेवा बंद रहती थी। वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचते हैं, ऐसे में रविवार को भी दिल्ली शिमला दिल्ली रूट पर विमान सेवा संचालित होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति में हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम के इस बदले मिजाज से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते कई भागों में बारिश व अंधड़ की संभावना है। विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों में आज और कल आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, ठंडी ठंडी हवाओं, देवदार की खुशबू और पहाड़ों की वादियों के बीच आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला। जी हाँ, आज के इस दिन को खूबसूरत बनाते हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप और सुन रहे हैं एफएम शिमला। आइए आगाज़ करेंगे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का। गीत गाता चल, इस फिल्म के इस गीत के साथ, इसे गाया है जसपाल सिंह और साथियों ने।

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम। जी हाँ, ये वो गीत हैं जिनमें प्यार है, अपनापन है और दिल को छू लेने वाले एहसास हैं। जी हाँ, इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाएंगे पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरूह के बोल और एसटी वर्मन का संगीत। जी हाँ, यहाँ पर हर गीत एक कहानी कहता है।

0: नहीं। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम। इन फिल्मों में जो है वो गीतों में जो गहराई और ठहराव देखने को मिलता था, ये वो सुनहरा दौर था जब फिल्मों में सादगी थी, गानों में मिठास थी और अभिनय में एक जादू। इन फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमें जीवन का दर्शन सिखाया जाता था। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप और एफएम शिमला पर सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और साथियों का गाया ये गीत।

0: गन्ने दिए।
1: फकीरा फिल्म के इस गीत को भी आपने सुना, इसे गाया मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इसी के साथ पुरानी फिल्मों के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
2: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
3: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
2: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप, और स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। FM शिमला पर यह समय रहता है पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, कलकल बहती नदियां, सरफीली सड़कें प्रदेश की खूबसूरती को दर्शाते हैं और इनमें चार चांद लगाते हैं यहाँ के लोकगीत। ये लोकगीत हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, पहाड़ों के दिलों की आवाज़ है। इन लोकगीतों में कहीं मेले, कहीं त्यौहार, कहीं प्यार की मिठास, तो कहीं पहाड़ों की सादगी है। ढोल नगाड़ों की थाप, पहाड़ी सुरों की मिठास सुनकर मन अपने आप झूम उठता है। दोस्तों, हिमाचली लोकगीतों की सबसे खास बात यह है कि ये सीधे दिल से निकलते हैं, दिल तक पहुँचते हैं। अगर आप भी हिमाचल से दूर रहते हैं और अपने गांव की मिट्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आनंद लीजिए पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का। अब आपको सुनवाएंगे रजनीश कुमार का गाया ये लोकगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। अब समय है थोड़ा मस्ती और नाटी के रंग में रंग जाने का, क्योंकि हिमाचल की पहचान उसकी नाटी के बिना अधूरी है। तो तैयार हो जाइए थिरकने और मुस्कुराने के लिए। कहते हैं जहां देवदार झूमते हैं हिमाचली लोकगीत दिलों में गूंजते हैं।

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप और सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप इस कार्यक्रम में ले रहे हैं और अभी आपने सुना संध्या दीवान का गाया ये लोकगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अतुल शर्मा का गाया ये लोकगीत कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में।

0: किशोर कुमार का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

ये लोकगीत सुनने में जितने मधुर होते हैं उतना ही सुंदर होता है इस पर किया जाने वाला नृत्य, और साथ ही साथ इस पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की तो बात ही कुछ और है।

इस पहाड़ी लोकगीत के साथ आज पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में बस इतना ही। 12 बजने को हैं। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी व अंग्रेजी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। आइए फिल्म संगीत में सुनते हैं ये गीत। इसे गाया है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म से लिया है हमने क्या कहना। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और राजेश रोशन का संगीत।

0: लीजिए बहनों, हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम महिला सम्मेलन लेकर। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी शर्मा
1: और मैं कौशल्या। आप सभी को हम दोनों का
0: नमस्कार।
1: तो देखिए बहनों, आज हम हाजिर हो गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन लेकर। तो देखिए ना, हर दिन मीनाक्षी कुछ ना कुछ खास होता ही है
0: जी,
1: है ना। आज भी बहनों खास दिन है। वो आज जो दिन है वो है जैव विविधता दिवस, है ना
0: जी।
1: हम अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस जो है आज मना रहे हैं। 22 मई का आज दिन है और आज का दिन जो है, जो हम बताया ही आपने, हमने आपको कि जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि हम सभी प्रकृति और पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक हो सके, है ना
0: जी। तो बहनों, पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है, ये तो हम सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पर देखिए हवा है, पानी है, मिट्टी है, वनस्पतियाँ हैं और जीवन को जो सहारा देती है।
1: बिल्कुल,
0: और हमारी धरती पर तो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। यही विविधता हमारी जैविक विविधता कहलाती है।
1: बिल्कुल मीनाक्षी। देखिए ना, यह विविधता जो है हमारे जीवन को संतुलित और सुंदर बनाती है। अगर पेड़ पौधे, पक्षी और वन्य जीव नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ ही जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: और जैविक जो विविधता है हमें भोजन, औषधियों और स्वच्छ वायु प्रदान करती हैं और ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है।
0: बिल्कुल। और धरती पर पाए जाने वाले वन्य जीव जैसे शेर, बाघ, हाथी, हिरण, पक्षी, असंख्य छोटे बड़े जीव, ये न केवल प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हैं बल्कि पारिस्थितिक संतुलन भी बनाए रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: देखिए ना कौशल्या, हर जीव का अपना महत्व होता है।
1: बिल्कुल,
0: देखिए ना, किसी से जंगलों की सुरक्षा होती है
1: जी,
0: तो किसी से जो है फसलों का परागकण होता है,
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही में कोई भोजन श्रृंखला का महत्वपूर्ण अंग भी होता है।
1: जी हाँ। और देखिए ना, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि लोग प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को समझें। हम सभी जानते हैं कि जैविक विविधता जो है पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: जी जी।
1: अगर ये संतुलन बिगड़ गया तो इससे मानव जीवन भी प्रभावित होता है। हमें पेड़ पौधों और जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए ताकि वन्य जीव सुरक्षित रह सके और साथ में हम भी एक अच्छे वातावरण में अपना जीवन बिता सके।
0: देखिए ना कौशल्या, पहले के समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक समय था
1: जी
0: जब प्रकृति के साथ लोगों का जो हस्तक्षेप है ना वो बड़ा कम था,
1: बहुत कम होता था, है ना,
0: और उस समय जो हमारे वन और जंगली जानवरों की संख्या भी ज्यादा थी क्योंकि जो मानवों का जो हस्तक्षेप था वो कम था।
1: बिल्कुल,
0: और उनके संरक्षण की कोई समस्या थी ही नहीं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज के समय में जंगलों की जो हम लोग अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, और भी मतलब कई जो समस्याएं हैं, कई गतिविधियां हैं, जैसे शिकार करते हैं हम और वन्य जीवों का अवैध व्यापार करते हैं, इन गतिविधियों के कारण जो है जानवरों की संख्या वो धीरे धीरे कम हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: या हम ये कह सकते हैं कि वो विलुप्त होने के कगार पर रहे, और ये देखिए सच में ही चिंता का विषय है।
1: बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, इसके लिए मीनाक्षी, इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन, है ना, सोच समझ कर जो है वो करना होगा। उनका उपयोग भी हमें

0: बड़ा सोच समझ के करना होगा। साथ ही उद्योग और खेतों की पर्यावरण अनुकूलता को बनाना होगा। विकास ऐसा होना चाहिए ना मीनाक्षी, जिससे ना तो प्रकृति को नुकसान पहुंचे और
1: बिल्कुल
0: ना ही वन्य जीवों का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़े।
1: जी,
0: हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देते हैं ना, ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: देखिए, हम तो बहनों से हमेशा अक्सर यही कहते हैं, बहनों जब भी आपका कोई कोई खास दिन होता है, जैसे जन्मदिन है, कोई आपकी एनिवर्सरी है, कुछ भी खास मौका होता है, घर पर जरूर एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं, ताकि हम अच्छे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
1: जी, देखिए ना बहनों, हमें अनाज, फल, सब्जियां, औषधियां भी प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं।
0: बिल्कुल
1: जंगल और पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं,
0: जी,
1: और जिससे बाढ़ और सूखे जैसी जो आपदाएं होती है उसका प्रभाव कम हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: और हमें सरकार द्वारा बनाए गए पर्यावरण संरक्षण कानूनों का भी पालन करना चाहिए।
0: जी हाँ। और देखिए ना, जब हम बात करते हैं मीनाक्षी जैविक विविधता की, तो पृथ्वी की सबसे बड़ी ये धरोहर है ना, जिसके अंदर हम रहते हैं।
1: बिल्कुल
0: इसके बिना मानव जीवन जो है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते,
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: प्रकृति हमें जीवन के लिए आवश्यक हर वस्तु प्रदान करती है, इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ना।
1: बिल्कुल, जैविक विविधता दिवस हमें ये संदेश देता है कि अगर हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सुरक्षित होंगी। इसलिए हमें मिलकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए।
0: और जैव विविधता को बनाने के लिए निरंतर प्रयास भी करना चाहिए, यही मानवता और पृथ्वी के उज्जवल भविष्य का जो है मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है।
1: जी
0: तो बहनों, अब क्यों ना इस बातचीत के साथ जो है एक गीत भी सुन लिया जाए।
1: जी

0: बहनों आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए मीनाक्षी, शब्दों में ही छिपी होती है हमारी सफलता, तो हमारी बहनें पूछेंगी वो कैसे छिपी होती है, तो आइए बहनों को बताते हैं इस विषय में।
1: देखिए बहनों, मनुष्य के जीवन में शब्दों का बहुत महत्व होता है।
0: बिल्कुल,
1: शब्द केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि ये व्यक्ति के विचार, उसके संस्कार और व्यक्तित्व को भी दिखाते हैं।
0: जी,
1: मीठे और अच्छे शब्द किसी का भी दिल जीत लेते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जबकि जो कड़वे शब्द होते हैं ना कौशल्या, वो रिश्तों को तोड़ भी तो सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जिसके मुंह में जितनी मिठास होती है ना, उसके उतने ही बहुत ज्यादा करीबी दोस्त बन जाते हैं ना, घर में भी और बाहर भी, है ना। और जिसके शब्दों में कड़वाहट होती है उसको बोलते हैं यार इसको छोड़ो, है ना, दोस्ती में भी वैसा ही हो जाता है ना। तो बहनों हमारे कहने का यही मतलब है, कहते भी है ना कि इंसान की पहचान उसकी वाणी से ही होती है, यानी कि हम जो भी बोलते हैं वही हमारी सोच होती है ना। हमारे मन की क्या सोच है, हमारा क्या विचार है, हमारी वाणी दूसरों तक कैसे पहुंचती है ना, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है ना।
1: जी, और हमें कोशिश भी यही करनी चाहिए कि पहले तोला जाए फिर बोला जाए।
0: बिल्कुल,
1: और देखिए शब्दों में जो एक हम कह सकते हैं बड़ी शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति है ना,
0: है ना?
1: एक प्रेरणादायक शब्द क्या निराश व्यक्ति में नया उत्साह भर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: और देखिए ना, शिक्षक के अच्छे शब्द विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। माता पिता के प्यार से कहे शब्द बच्चों में आत्मविश्वास को जगाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और इसी तरह जैसे नेता है, लेखक भी अपने शब्दों के माध्यम से ही समाज को नई दिशा देते हैं। मधुर वाणी से व्यक्ति सभी का प्रिय बन जाता है।
0: बिल्कुल, और देखिए जो लोग जो विनम्रता और समानता के साथ बात करते हैं ना मीनाक्षी, उन्हें समाज के अंदर जो बड़ा आदर भी मिलता है ना। मीठे शब्द जो है तनाव और विवाद को कम कर सकते हैं कुछ हद तक, और कई बार कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे शब्दों से हमें जो है उस स्थिति को हम आसान बना सकते हैं। और वही बात आ जाती है, कठोर और अपमानजनक शब्द दूसरों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं, यानी कि चोट पहुंचाते हैं ना, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है और व्यक्ति का सम्मान जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है।
1: बिल्कुल, सम्मान कम हो जाता है जब हम अपने मुँह से कोई ऐसी बात कह देते हैं जो दूसरों को बुरी लगती
0: है ना।
1: हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसा कि पहले भी कहा कि पहले तोला जाए फिर बोला जाए, क्योंकि एक बार जो शब्द आपके मुंह से निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। देखिए बहनों, जब आप अपने सगे संबंधियों या घर परिवार या दोस्तों के साथ होते हैं तो आपको अपनी सोच, अपने विचारों को उनके सामने रखने में कोई दिक्कत तो नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि क्या होता है ना, जो घर परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो सभी जो आपके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं।
0: जी, और देखिए ना, लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो ऑफिस के हर सदस्यों को आपके नेचर के बारे में पता नहीं होता है ना। आप अपनी बात कहने के लिए किन शब्दों का सहारा ले रही हैं, या वो ऑफिस में आपका जो व्यवहार कैसा है, आपके बोलने का अंदाज कैसा है, इन सब बातों से ये पता चलता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है और कितना आत्मविश्वास है।
1: बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो नकारात्मक शब्द हैं वो हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं।
0: आते ही है वो तो, है ना
1: बहनों। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जल्दी से शब्दों को, जो ऐसे शब्द है जो दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, उन शब्दों को अपने शब्दकोश से आप निकाल दीजिए
0: हमेशा के लिए, है ना।
1: और इसके साथ ही आपको अपने विचार व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को अपनाने का हुनर भी तो आना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए ना, हमें अपनी बात कम शब्दों में स्पष्ट रूप से और सकारात्मक रूप से रखनी भी आनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप ऐसा करेंगी तो सफलता कभी भी आपसे दूर जा ही नहीं सकती, है ना। शब्द जो है जो मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है ना। अच्छे शब्द रिश्ते बनाते हैं, सम्मान दिलाते हैं, जीवन में सफलता का मार्ग भी

0: यही शब्द जो है वो खोलते हैं।
1: जी, तो बहनों हम तो यही कहेंगे आपसे कि आप हमेशा आप हम सभी को हमेशा मीठे, विनम्र और सकारात्मक भाषा का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम जो है दूसरों के दिलों में जगह बना सकें, सम्मान पा सकें।

0: जैसे खुद कुदरत ने फुर्सत में तुम्हें सजाया होगा।
1: तो बहनों, आप समझ ही गई होंगी कि अब कार्यक्रम में वक्त हो चुका है सौंदर्य चर्चा पर बात करने का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे त्वचा की सुंदरता के लिए घरेलू उपाय।
0: बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, हमारी बहनें जो हैं जानती ही हैं, आज उनके लिए सौंदर्य के ऊपर कुछ ना कुछ हम लेकर आते हैं। तो बहनों, आज हम बात करेंगे, देखो अक्सर हमारी बहनें बाज़ार से महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदती हैं
1: जी,
0: जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बहनों, हम यही चाहते हैं आप जो हैं स्वस्थ रहें, मुस्कुराती रहें और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखे, है ना। तो अगर आप घरेलू ही चीज़ों में जो हमारे घर में मौजूद होती हैं वस्तुएं, उनका चेहरे पर निखार के लिए इस्तेमाल करती तो क्या बात हो सकती है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो बहनों, आप घर पर बने क्लिंजर स्क्रब जो है बेहद प्रभावी और सुरक्षित भी होते हैं, है ना। और हमें हर तरीके की जो बाहर की जो केमिकल वाली मात्रा है उसमें भी कम पाई जाती है ना। तो हमें चेहरा को वो चमकाते भी हैं, हमें जैसे बाहर का हम कुछ मीनाक्षी लगाते हैं तो कई बार देखो जलन हो जाती है ना, और कोई दाग की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो बहनों, हमें घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने चेहरे की क्लिंजिंग और स्क्रबिंग करनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, कचले आपने सही कहा, कई बार जलन भी हो जाती है जब हम कोई प्रोडक्ट बाजार से लेके आते हैं,
0: जी
1: क्योंकि उसमें जो केमिकल यूज़ होता है हो सकता है वो हमारी स्किन को सूट ना करता हो।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे में बहनों, हमें घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने
0: बिल्कुल
1: जो त्वचा की क्लिनजिंग और स्क्रबिंग के लिए।
0: बिल्कुल
1: सबसे पहले बात करते हैं कच्चे दूध की।
0: जी
1: कच्चे दूध की अगर हम क्या करते हैं कि रुई के फाहे को भिगो कर इससे आप चेहरा साफ कर सकते हैं, तो ये एक बेहतर क्लिंजर का काम करता है। इससे त्वचा की गंदगी और धूल मिट्टी को चेहरे से बिना नमी छीने ही ये निकाल देती है और चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है।
0: देखिए ना, कच्चा दूध का कितना अच्छा इस्तेमाल है अगर हमारी बहनें करना चाहें। घर में तो सभी के दूध आता ही है ना।
1: जी
0: और अब बहनों बात करते हैं दही और शहद की। ये भी बहनों एक बहुत ही अच्छा क्लिंजर का काम करता है। आपने करना क्या है, 1 चम्मच दही में 1/2 चम्मच शहद मिलाना है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना के इसे चेहरे पर आपने सिर्फ 2 मिनट तक मतलब लगा के और हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। और फिर 12 या 15 मिनट के बाद आपको गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। फ़र्क आपको खुद नज़र आएगा, है
1: बिल्कुल
0: ना। और बहनों, होता है हमारे पास समय नहीं होता, हम सोचते हैं कि ये कौन करेगा, इसको कौन मिलाएगा। तो बहनों, हफ्ते में आप एक बार भी करें तो आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा, है ना।
1: जी, अगर घरेलू स्क्रब की बात करें तो ये हमें हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: पहले हम बात करेंगे ओट्स और शहद के स्क्रब के बारे में।
0: जी
1: देखिए, 2 चम्मच ओट्स को 1 चम्मच शहद के साथ इसको आपको मिलाना होगा।
0: बिल्कुल
1: ओट्स को बारीक पीस लें पहले और
0: जी
1: उसमें कुछ बूंदें गुलाब जल की मिलाएं। इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से आपको इसको स्क्रब करना है
0: बिल्कुल
1: और फिर उसके बाद गुनगुने पानी से इसे धो लेना है। और जब इसको आप लगाएंगे तो आप फ़र्क खुद ही महसूस करेंगी।
0: जी हाँ। अब बहनों को बता देते हैं, बहनों कॉफ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा ना हमारे चेहरे के लिए, हमारे शरीर के लिए तो होती है अगर आप कुछ मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। देखो, कॉफ़ी और चीनी का बहनों स्क्रब हमें तैयार करना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लें, 1/2 चम्मच पीसी हुई चीनी जो बिल्कुल बारीक पीसी होती है ना, कुछ बूंदे नारियल का तेल डालना है और इसको जो है अच्छा सा पेस्ट बनाएं, इसे चेहरे पर लगाएं। 1 या 2 मिनट तक आप हल्के हाथों से इसे मसाज करें चेहरे पर। ये बहनों मृत कोशिकाएं जो होती है हमारे चेहरे में उसको हटाने में बहुत ज़्यादा उत्तम तरीका माना जाता है। और आपको देखिए, आपकी जो त्वचा है इसके बाद देखिए आपको कितना ग्लोइंग स्किन नज़र आएगी सामने, है ना।
1: बिल्कुल। और फेस पैक की अगर बात करें तो ये त्वचा को पोषण और चमक दोनों के लिए ज़रूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: बेसन और हल्दी का पैक अपने घर पर आप बना सकती हैं। इसके लिए आपको 2 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध और गुलाब जल थोड़ा मिलाकर आपको पेस्ट बना देना है।
0: बिल्कुल
1: इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। फिर आपको क्या करना है, हल्के हाथों से इसको रगड़ना है, वो भी ऊपर की तरफ,
0: बिल्कुल
1: है ना। त्वचा की गहराई, इससे मतलब ये जो त्वचा को गहराई से साफ करता है
0: बिल्कुल
1: और चेहरे पर प्राकृतिक रूप से चमक भी आती है।
0: बिल्कुल। और देखिए बहनों, हमने इतना सारा तो बता दिया पर अब सावधानियां भी तो रखना ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ें लगा रहे हैं घर की बनी हुई, पर सावधानियां तो रखनी होगी। तो बहनों करना क्या है, जब भी हम स्क्रबिंग करते हैं अपने चेहरे की तो हल्के हाथों से उसके जो है हमने करना है, और ताकि त्वचा के ऊपर कोई लाल जो है धब्बा ना पड़े, आपकी त्वचा में खरोंच ना है, हल्के हाथों से ऊपर की तरफ स्क्रबिंग करनी चाहिए।
1: जी, और क्लिंजिंग और स्क्रबिंग करने के बाद ही आप अपनी जो त्वचा पर नमी युक्त मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं।
0: बिल्कुल
1: हो सके तो आप नारियल तेल, बादाम तेल भी लगा सकती हैं।

तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया होगा, तुम्हारी एक झलक में सारा जहां समाया होगा। नजरें हटाना मुश्किल है तुम्हारी इस अदा से।

0: बिल्कुल
1: इसे लगाने से आपकी चेहरे की जो त्वचा है उसमें प्राकृतिक रूप से निखार आता है।
0: जी हाँ, तो देखिए ना बहनों, हमें साइड इफेक्ट से बचना है और घर में हमारे सभी चीज़ें मौजूद हैं ना, बेसन, दही है ना,
1: जी जी।
0: तो हम हर चीज़ का घर में ही इस्तेमाल करके अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। अब मीनाक्षी, क्यों ना गीत सुन लिया जाए।
1: जी

0: आपसे बातचीत करते हुए और ये गाने सुनते हुए हमें पता ही नहीं चला हम कार्यक्रम में कब अंतिम पड़ाव में पहुंच गए, है ना मीनाक्षी। हमारा मन तो बहुत ज़्यादा करता है ना, हम बातें ही करते रहे, पर क्या करें बहनों, देखिए हमें समय के पाबंद तो रहना ही है ना। अब बहनों अंतिम में कार्यक्रम के चलते चलते में आज हम आपसे बात करेंगे, बालों को हमें मजबूत बनाना है तो हमें घरेलू नुस्खे ऐसे कौन से अपनाएं जिससे हमारे बाल जो है चमकदार बने।
1: बिल्कुल, सबसे पहले गुनगुने तेल से मालिश करें और हफ्ते में एक या दो बार नारियल के तेल, बादाम या ऑलिव ऑयल से स्कैल्प में मालिश करें। इससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ता है और बालों को पोषण भी मिलता है।
0: मीनाक्षी आपको एक बात याद है, जब हम छोटे छोटे होते थे कभी नानी या हमारे मम्मी कितने अच्छे पकड़ के बिठा के मालिश करते थे, है ना, 15-15, और बाल कितने लंबे लंबे होते थे,
1: बिल्कुल स्ट्रॉन्ग,
0: है ना, स्ट्रॉन्ग भी होते थे। और आजकल क्या हो गया, आजकल वो ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। तो बहनों ऐसा बिल्कुल ना करें, देखिए हमें पोषण तो देना ही पड़ेगा अपने बालों को, अगर हमारे बालों में पोषण नहीं होगा तो वो बढ़ेंगे कैसे, है ना। तो बहनों आप एलोवेरा जेल जो है वो भी लगा सकती हैं बालों में। उसका लगाने का तरीका क्या है कि आपने वो जो हमें नमी देता है बालों को, है ना, वो रोकता भी है हमारे बालों को झड़ने से, आपने करना क्या है, बस एलोवेरा जेल को निकाल के एक कटोरी में जिसमें भी निकालती हैं उसको, उसमें उससे थोड़ा सा आप कोई 15-20 मिनट मसाज करें, उससे जैसे आपके बालों में रूसी है, आपके बाल झड़ रहे हैं, 30 मिनट तक उसे आधे घंटे तक आप रहने दीजिए, उसके बाद देखिए फर्क आपको खुद महसूस होगा, शैम्पू से भी ज्यादा चमकदार बनते हैं मीनाक्षी बाल।
1: बिल्कुल,
0: है ना, जेल लगाती हैं बालों में।
1: और अब बात करते हैं आंवला और अरीठी की।
0: बिल्कुल,
1: ये बालों के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। और देखिए रात को क्या करना है आपको, शिकाकाई के साथ इसको भिगो देना है, आंवला और अरीठी को, और सुबह इससे आपको बाल धोने हैं। इससे जो प्राकृतिक ये जो क्लिंजर का काम भी करता है और बालों में चमक भी आती है।
0: जी जी बिल्कुल। और देखिए बहनों हम हमेशा कहते हैं संतुलित आहार का भी होना जरूरी है, है ना। और एक बात बहनों को और बता दूं, प्याज का रस जो है हमारे बालों के लिए बहुत उपयोगी है। बजाय कि हम किसी शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं, घर में प्याज का रस बहनों निकालिए, है ना, और उसका रस कम से कम 15-20 मिनट तक आप अपने स्कैल्प पे ना, अपने सिर पे अच्छी तरह मसाज करें, और उसके बाद आप गुनगुने पानी से धो लें, देख फर्क आपको खुद नजर आएगा, आप नए बाल आपके उगने लग जाएंगे, है ना। और जैसा कि अभी कह रहे थे हम संतुलित आहार, तो बहनों हम हमेशा अपनी बहनों से कहते हैं संतुलित आहार जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना, शारीरिक स्वास्थ्य भी रहता है इससे, और हमारे बाल जो है नेचुरली, देखिए जब हमारा संतुलित आहार होगा तो हमारे बाल भी मजबूती होंगे।
1: जी, और जो ये संतुलित आहार है वो सबसे हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है।
0: बिल्कुल,
1: और इसमें हम हरी सब्जियाँ, नट्स, मौसमी फल, ये सब जो चीज़ें वो शामिल कर सकते हैं। जब हम देखिए खुद स्वस्थ होते हैं ना, तभी तो हमारी हर चीज़ स्वस्थ होगी, यानी कि बाल भी तभी स्वस्थ होंगे। और साथ ही में देखिए आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो अपने आप को हाइड्रेट भी रखेंगे, ढेर सारा पानी पिए।
0: बिल्कुल, चलिए बहनों के साथ गीत सुन लिया जाए।
1: जी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सम्मेलन। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 होने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
3: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 675. And with that, we end this news bulletin.
1: स्टूडियो की घड़ी में 1:10 हुए हैं। आकाशवाणी एफएम शिमला पर यह समय है म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का। जी हाँ, जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ संगीत शुरू होता है। तो अब शब्दों की नहीं, सिर्फ सुरों की लहरें गूंजेगी। तो तैयार हो जाइए गीतों के इस सफर में आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। आगाज करेंगे पुकार फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है उदित नारायण, हेमा सरदेसाई ने, मजरूह सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर के बोल हैं, ए आर रहमान का संगीत।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ यहाँ सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में।
3: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, लेट्स स्टार्ट द फन।

बेजान जिंदगी में कोई मनमीत होना चाहिए, मन का मीत ना हो तो साथ संगीत होना चाहिए। जी हाँ, आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा गीत। अब आपको सुनवाएंगे नायक फिल्म का ये गीत, उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, आनंद बख्शी की बोल, ए आर रहमान का संगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: तो फ्रेंड्स आइए वॉल्यूम को थोड़ा हाई करते हैं और सुनते हैं ये गीत फिल्म गदर से। इसे गाया है उदित नारायण ने, आनंद बख्शी के बोल, उत्तम सिंह का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, और अब आपको सुनाएंगे लागा चुनरी में दाग। इस फिल्म का ये गीत सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में, स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और शांतनु मोइत्रा का संगीत इस फिल्म में।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ है, आप आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, और जी हाँ दोस्तों, हम गीतों के उस जादुई सफर पर चल पड़े हैं जहाँ धुनें दिल की धड़कन बनती हैं और बोल रूह को छू जाते हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं हे बेबी फिल्म का ये गीत। इसे गाया है सलीम शहजादा और साथियों ने, समीर के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: हे बेबी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सलीम शहजादा और साथियों की आवाज़ में। आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं म्यूज़िक मस्ती कार्यक्रम। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे हैं कुछ चुनिंदा गीतों का। तो आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: कार्यक्रम में आनंद लीजिए वेलकम फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है आनंद राज आनंद और साथियों ने फिल्म वेलकम से।

0: युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: वक्त पंख लगाकर कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता, खासकर जब साथ हो संगीत का। जी हाँ, आइए अब आपको सुनवाते हैं सावरिया फिल्म का ये गीत कुणाल गांजेवाला की आवाज़ में।

103.7 में का हर आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में दो बज चुके हैं दोस्तों। एफएम शिमला पर यह समय है गीतों के कुछ चुनिंदा रंग कार्यक्रम सब रंग का। जी हाँ, इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपको

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं सब रंग कार्यक्रम। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये पंजाबी गीत हरभजन मान की आवाज़ में।

इस पंजाबी गीत के साथ आज सबरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। 2:15 होने को हैं। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र दोपहर हिंदी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

हर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के

0: राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिटी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2 चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने

0: कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं स्पीति कार्यक्रम।

था इलुन्यबी के गबला थे थिरिंग के खास लोंडा रिंगे नाहिन तेने पर्यटन सीजन की फिल खोर तो यौन छिगल के विसंख्या दे मांग दुपु दे दूसिया तेने वती फिल तेने अलायंस ईयर शिमला दिल्ली रूट हफ्तल तेने श्याम दुन की फिल नमरु तंगना हिंदूसिया कंपनी भी जारी जो पे न्यू शेड्यूल वाता शिमला एयरपोर्ट मैनेजमेंट लते पासिया तेने दांग मंगलवार रूप तेने ई रूट की उड़ान सेवा मैकासिया न्यू शेड्यूल के अनुसार शिमला धर्मशाला लवाता हफ्ता लतने श्याम टू तेने नमरु डॉसिया तेने ई सोमवार ने शुक्रवार रूप डॉसिया ना लई ना ई रूट लतने रविवार से मंगलवार ने फ्लाइट डॉमासिया दंग थरिंग वीकेंड के लतन खोर तो यंगन मांग दुपु दे दूसिया होती पिले था रविवार की शाखा तेने दिल्ली शिमला दिल्ली रूट की सेवा संचालित चोज फासिया तेने चिले से इन पर्यटन के तेने बढ़ावा थोपकासिया तेने इके काबला तेने राजधानी शिमला विनियमपोल तेने चंबा छे कांगड़ा छे कुल्लू छे तेने लाहौल स्पीति रु छारो न्यूसे गेप छिलो तेने तापमान न्यूसे न्यूंग दुपु दे दूसिया तेने नामला न्यूसे जे थांग दुडोना लवा तेने गुन्ना लवा तेने मी गेला तेने गर्मी ने लो राहत थोप दूसिया नियम्बो मौसम विभाग से ना थिरिंग ने लो पश्चिम विशोप एक्टिव छाड़ दूसिया तेने होती फिला तेने जगह हालम तो तेने छारवा छे जिलो लोकमर योजी दूसिया विभाग से न किन्नौर छे जिला वो स्पीति या फोर जिलो जेनमा जिला जेनमा गेरु थिरिंग छे नांगमुन्या तेने लुया छे छारवा छे तेने लोकमर छे होते योजी दूसिया ता इकी कबला अन तशी सोमुखी लुन्या बुशिंग नायन।

अभी आप सुन रहे थे स्पीति कार्यक्रम। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, राडार कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट के तहत BSF की सुरक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके अगले एक वर्ष के भीतर अभेद्य सीमा सुरक्षा ढांचा विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को व्यापक

0: व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: आज जैव विविधता दिवस है। इस उपलक्ष पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिरमौर जिला के नाहन स्थित पीएम श्री कन्या पाठशाला में हिमजनक मंच संस्था और ज्ञान विज्ञान समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारा लेखन, पेंटिंग और सामूहिक चर्चा जैसी प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमजनक मंच संस्था के अध्यक्ष कंवर सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के महत्व को समझ सकें।
2: हिमालयन जनकल्याण संस्कृति मंच और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के संयुक्त तत्वाधान में बिना किसी सरकारी अनुदान के हम वॉलंटरीली यहाँ पे एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हमारे विद्यार्थी जैव विविधता के ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। विद्यार्थी पेंटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जैव विविधता के विषय में एक जन जागरूकता बढ़ाई जाए। जंगलों में आग लगती है, जैव विविधता हमारी नष्ट हो जाती है, उसमें जागरूकता क्रिएट करें।
0: राजधानी शिमला में अवैध कब्जों और बदलती जनसांख्यिकी को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि शहर में तहबाजारी माफिया सक्रिय है और एक विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से स्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। समिति के संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि शिमला शहर की बदलती डेमोग्राफी प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने हिमाचल के लोगों को तहबाजारी में प्राथमिकता देने और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की राज्यपाल से मांग की है।
3: हिंदू संघर्ष समिति सनातन हितों और हिंदुओं के हितों के लिए लंबे समय से संघर्षरत है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है वो हिमाचल प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। इस डेमोग्राफी की आड़ में क्या क्या चीजें पनप रही है, यहाँ शिमला के अंदर तो एक वर्ग विशेष का तहबाजारी माफिया सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। तो नगर निगम की टीम शाम को 6-7 बजे उनको वहां से उठाने के लिए पहुंची तो वो नगर निगम की टीम को खुले तौर पे जान से मारने की धमकी और देख लेने की धमकी, इस तरीके की जो चीजें है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए माथे पे एक कलंक का टीका है। क्या ऐसे लोगों को तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? हमने यह जिला प्रशासन से भी यह मांग की थी, आज पुनः हम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ये मांग दोबारा करना चाह रहे हैं।
0: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिलों में आज हल्की बूंदाबांदी व हवाएं चलने से लोगों को लू के थपेड़ों से मामूली राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और अगले 2 दिन भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने कहा कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
4: बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक यानी कि 22 और 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है। वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जिलों में जो है हीट वेव की भी कंडीशन देखने को मिली है, जिनमें से हमारा शिमला, ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर और नाहन जैसे इलाकों में हीट वेव की स्थिति देखी गई थी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है योग महोत्सव 2026, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
6: प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग विश्वभर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के सबसे विश्वसनीय साधनों में से एक के रूप में उभरा है। योग शब्द संस्कृत मूल शब्द योज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट करना, जो मन और शरीर की एकता, विचार और कर्म

0: की एकता, संयम व संतुष्टि मनुष्य व प्रकृति के बीच सामंजस्य, स्वास्थ्य व कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि योग जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन स्थापित करने के साथ साथ स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग के अभ्यास के लाभों के बारे में व्यापक जानकारी का प्रसार विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। इससे समग्र स्वास्थ्य क्रांति का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें उपचार की तुलना में रोकथाम पर अधिक ध्यान दिया गया। इस वर्ष देश में योग दिवस को योग महोत्सव 2026 के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर 100 दिनों की यात्रा के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण की 100 दिन की उल्टी गिनती का प्रतीक है। इसका उद्देश्य योग के विविध आयामों को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य, कल्याण व शांति के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है। इसके तहत विभिन्न आयु वर्ग और स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए गैर संचारी रोगों और लक्षित समूहों के लिए 10 योग प्रोटोकॉल को चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय ने वैश्विक भागीदारी में निरंतर वृद्धि के साथ 11 संस्करणों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य उत्सव के रूप में विकसित हुआ है। योग केवल एक जीवन शैली नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अनुशासन है। ये मानसिक स्पष्टता, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। इसके लाभों ने लाखों लोगों को कोरोना महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय में भी लचीलापन बनाए रखने में मदद की। गैर संक्रामक रोगों और लक्षित समूहों के लिए 10 योग प्रोटोकॉल शुरू करते हुए आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव माधव ने कहा कि ये प्रोटोकॉल विभिन्न आयु समूहों और जीवन के विभिन्न चरणों के लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। इससे वे अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक जिम्मेदारी ले सकेंगे, शारीरिक और मानसिक लचीलापन बढ़ा सकेंगे और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने हवाई यात्रा के लिए योग प्रोटोकॉल का भी शुभारंभ किया। ये विशेष रूप से तैयार किया गया 5 मिनट का एक कार्यक्रम है, जिसमें बैठकर योगासन, श्वास व्यायाम और संक्षिप्त ध्यान शामिल है। विशेषज्ञों द्वारा विकसित इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य हवाई यात्रा के दौरान यात्रा संबंधी तनाव को कम करना, रक्त संचार में सुधार करना, मांसपेशियों की तकलीफ को दूर करना और मानसिक शांति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की 100 दिन की उल्टी गिनती के हिस्से के रूप में मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने योगा 365 अभियान के अंतर्गत हैबिल्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रतिदिन निशुल्क ऑनलाइन योग सत्र प्रदान किए जाएंगे। योग 365 का उद्देश्य व्यक्तियों को योग को दैनिक आदत के रूप में अपनाने में मदद करना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले निरंतर अभ्यास और गहन सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा। योग महोत्सव 2026 समग्र स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एक नए वैश्विक आंदोलन का मंच तैयार करता है। कर्तव्य पथ से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व को मजबूत किया है।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था योग महोत्सव 2026, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती। वाचक स्वर था राजकुमारी चंदेल का। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 3:10 हुए हैं। एफएम शिमला पर यह समय है ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत का। आगाज करेंगे प्रेमनगर फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोंसले ने, आनंद बख्शी के बोल, एसडी वर्मन का संगीत। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
4: 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
3: सड़क, पानी, सफाई,

0: रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत, इसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क।

0: पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
0: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: यहाँ चोर है सब, कोई साध नहीं।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत। और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
2: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव। और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
3: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
2: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
3: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: फिल्म संगीत में अब आपको सुनवाएंगे लैला मजनू फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर के बोल और मदन मोहन और जयदेव का संगीत इस फिल्म में।

इसी गीत के साथ आज ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत में बस इतना ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं अमित कुमार शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। हर बात की नींव है और हर सफलता की शुरुआत है। आज का विषय है अभिभावकों का हमारे जीवन पे महत्व। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई सच्चा रिश्ता है जो सबसे निस्वार्थ, सबसे पवित्र और सबसे सच्चा होता है तो वो हमारे माता पिता का होता है। और बच्चों का रिश्ता अभिभावकों से केवल हमारे जन्म देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे हमारे जीवन के निर्माता होते हैं। वे हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, संस्कार देते हैं और जीवन की कठिन राहों पर आगे बढ़ने का साहस भी देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि अभिभावकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वे हमारे लिए

त्याग करते हैं। इस आधुनिक समय में बच्चों और माता पिता के रिश्तों में क्या बदलाव आए हैं और हमें अपने अभिभावकों के प्रति क्या जिम्मेदारी रखनी चाहिए। दोस्तों, माता पिता का प्रेम किसी चमत्कार से कम नहीं होता। शायद इसीलिए कहा गया है, अगर धरती पर भगवान कहीं हैं तो वे हमारे माता पिता के रूप में हमारे साथ है। आइए इसी भावना को व्यक्त करते हुए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

नहीं जानता, सही गलत की पहचान नहीं कर सकता। ऐसे समय में माता पिता ही उसके सबसे पहले गुरु बनते हैं। माँ बच्चे का प्यार, ममता और संवेदनाशीलता सिखाती है, जबकि पिता उसे अनुशासन, संघर्ष और जिम्मेदारियों का महत्व बताते हैं। बच्चा अपने घर के वातावरण में ही सीखता है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की पहली पाठशाला उनका घर होता है। अगर माता पिता अच्छे संस्कार दे तो बच्चा जीवन में एक अच्छा इंसान बनता है। ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों का सम्मान करना, मेहनत करना, ये सभी गुण हमें अपने अभिभावकों से ही मिलते हैं। दोस्तों, माता पिता का जीवन त्याग और संघर्ष से भरा होता है। वे अपनी इच्छाओं को छोड़कर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। एक पिता दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके बच्चों

जीते हैं और कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। इसलिए कहा जाता है, बच्चे वो नहीं सीखते जो उन्हें सिखाया जाता है, बल्कि वे सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। दोस्तों, आज का समय तेजी से बदल रहा है। तकनीक ने ज़मीन को आसान तो बना दिया है, लेकिन कई रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा दी है। आज परिवारों में बातचीत कम होती जा रही है, बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त है, जबकि माता पिता का काम भाग दौड़ में उलझे रहते हैं। कई बार एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से खुलकर बातचीत नहीं कर पाते। इसी कारण बच्चों और अभिभावकों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है। आज ज़रूरत है कि परिवार फिर से एक साथ बैठे, बातचीत करे, एक दूसरे को समय दे, क्योंकि रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने से मजबूत होते हैं। साथियों, जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो सबसे पहले हमें हमारे माता पिता की याद आती है। उनकी ममता और उनका साथ हमें हर दर्द से लड़ने की ताकत देता है। आइए सुनते हैं ये दिल छू लेने वाला गीत।

साथियों, किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व केवल स्कूल या किताबों से नहीं बनता। उसके विचार, व्यवहार और आदतों पर सबसे अधिक प्रभाव उसके माता पिता का होता है। अगर घर का वातावरण सकारात्मक हो तो बच्चा आत्मविश्वासी बनता है। यदि माता पिता बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनकी बातें सुने और उन्हें समझे तो बच्चे मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। अभिभावकों का व्यवहार बच्चों के लिए उदाहरण बन जाता है। यदि माता पिता दूसरों का सम्मान करते हैं, ईमानदारी से जीवन

साथियों, हमारे भारतीय संस्कारों में माता पिता को भगवान के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेव भव पितृदेव भव, अर्थात माता और पिता देवताओं के समान है। माता पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जिन लोगों ने अपने अभिभावकों का सम्मान किया है, वे जीवन में आगे बढ़े हैं। सम्मान केवल शब्दों से नहीं होता, सम्मान का अर्थ है उनकी भावनाओं को समझना, उनकी बात ध्यान से सुनना, उनके संघर्षों की कदर करना, उन्हें समय देना और कठिन समय में उनका सहारा बनना। दोस्तों, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी सफलता के पीछे आपके माता पिता की मेहनत भी होती है। साथियों, जब आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तब आपके माता पिता भी आपकी चिंता करते हैं। वे चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो और एक अच्छे इंसान बनो। कभी कभी माता पिता डांटते भी है, लेकिन उनकी डांट में प्यार और चिंता छिपी होती है। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बातों को समझें और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। एक अच्छे समाज की नींव मजबूत परिवारों पर टिकी होती है और मजबूत परिवार की नींव अच्छे अभिभावकों पर। यदि माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे तो समाज में ईमानदारी, प्रेम और मानवता बनी रहती है। लेकिन यदि बच्चों को सही दिशा ना मिले तो समाज में अपराध और हिंसा बढ़ सकती है। इसलिए अभिभावकों की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं है, वे पूरे समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। पिता अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सपने देखता है। वे चाहता है कि उसका बच्चा जीवन में सफल हो और उनका नाम रोशन करे। आइए सुनते हैं आशाओं और सपनों से जुड़ा ये प्रेरणादायक गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि हम अपने अभिभावकों के लिए क्या कर सकते हैं। हमें चाहिए कि रोज कुछ समय अपने माता पिता के साथ बिताएं, उनसे प्यार और सम्मान की बातें करें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, उनकी सलाह को महत्व दें और जीवन में सफल होकर उनका नाम रोशन करें। याद रखिए, माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनके बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं। श्रोताओं, जीवन में चाहे कितनी भी सफलताएं मिल जाए, लेकिन यदि माता पिता खुश नहीं हैं तो वे सफलता अधूरी है। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे, लेकिन आपके असफल होने पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वे आपके अभिभावक ही होंगे, इसलिए कभी भी अपने माता पिता को अकेला महसूस मत होने दीजिए। समय के साथ दूरियां बढ़ जाती है, लेकिन माता पिता का प्यार कभी कम नहीं होता। जब बच्चे अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, तब दिल में वो खालीपन सा रह जाता है। वही एहसास इस गीत की गहराइयों में महसूस होता है। आइए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाला गीत।

अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगा, माता पिता हमारे जीवन के सबसे अनमोल धरोहर होती है। उनका प्रेम, त्याग और आशीर्वाद ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। आइए आज हम सभी इसी संकल्प के साथ अपने अभिभावकों को समय देंगे, उनका आदर करेंगे और उन्हें कभी दुखी नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अमित कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए FM शिमला।

103.7 मेगा हर्ट्स आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर ये समय रहता है फिल्म संगीत का। तो आइए फिल्म संगीत के साथ साथ आज कुछ बातें कर ली जाए कि आप जो है वो डिहाइड्रेशन और वायरल से कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, चिलचिलाती गर्मी का असर जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी ज़रूर पड़ता है और इससे बचने के लिए हमें जो है वो दिन भर कम से कम 8 से 10 गिलास साफ पानी पीना चाहिए। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ जैसे पदार्थों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर प्यास ज़्यादा आपको लग रही है तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये आपकी जीभ का सूखना, आपके मुंह का सूखना, ये सब लक्षण हैं डिहाइड्रेशन के। जी हाँ, आइए आपसे बातें और भी करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं परिणीता फिल्म का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप और हम बात कर रहे हैं कि वायरल और डिहाइड्रेशन से आप कैसे बच सकते हैं। डिहाइड्रेशन के लक्षणों की बात करें तो चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस करना, थकावट और सुस्ती रहना, सिर दर्द होना, त्वचा रूखी और खिचखिची लगना, हृदय गति तेज़ होना, बेहोशी या घबराहट होना, ये सभी लक्षण हैं डिहाइड्रेशन के। जी हाँ, आप अगर धूप में निकलें तो धूप में सीधे संपर्क से बचें, टोपी या छाता का इस्तेमाल करें, हल्के और ढीले सूती वस्त्र पहनें, फिजिकल एक्सरसाइज करते समय बार बार पानी पीते रहें। तरबूज, खीरा, संतरा, अनानास जैसे फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जी हाँ, अगर आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो आप ये जो उपाय हैं ये अपना सकते हैं। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं लक्की फिल्म का ये गीत, इसे गाया है सोनू निगम ने, समीर के बोल अदनान सानी का संगीत।

टैक्सी नंबर 9211 इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना के और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि वायरल और डिहाइड्रेशन से आप कैसे बचें। जी हाँ, वायरल की बात की जाए तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, भीड़ में जाने से बचें, मास्क पहनें, पर्याप्त नींद लें, आराम के साथ जो है वो आप नींबू पानी, आंवला, दही जैसे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें। और साथ ही साथ अगर आपको 3-4 दिन तक बुखार रहता है तो आप जांच ज़रूर कराएं।

रख दे बसंती फिल्म के इस गीत के साथ आज बस इतना ही। गर्मी के इस मौसम में अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही बने रहें FM शिमला के साथ। आज का ये सफ़र आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचि ठाकुर के साथ। 4:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम।

सिरमोरी कार्यक्रम सुनो आले तो सोबी के मेरे ढाल तो सती एलो आवास अंकित और तुए लो शोणे आकाशवाणी केंद्र शिमला दा सिरमोरी कार्यक्रम ठीक ठाक वसो तो सब है। हाँ भी बिल्कुल ठीक हो सो तो एलो हमारे यो खास कार्यक्रम दे बात करने मोबाइल तकनीक के दुष्परिणाम के जो है जे मोबाइल फोन हो सो इंदे के कहाँ नुकसान हो सो और कहाँ इंदे के गलत असर पड़ो। साथ ही बात करबे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के सुनबे कुछ बढ़िया बढ़िया सिरमौरी गाने साथ ही सुनबे एलो देश प्रदेशों की कुछ खास खास खबरें। तो एलो के यो खास कार्यक्रम दे सोभी दे आगे बात करबे मोबाइल तकनीक के दुष्परिणाम की मतलब इंदे के का नुकसान सो और का इंदे के गलत असर पड़ो। तो मोबाइल आमारो एक ऐसो साथी सो जो जीशो आखी खुलनो दो पुंडो राते आखी मिचनो तोड़ी आमो ही साथी रो तू तो ईशु समझो जे मोबाइल हमारे खास जरूरत रहे बने मोबाइल के बिना हमारे कुंजे काम नहीं होते ऐबे के वक्त दे पर जो ऐजे हमारे मोबाइल की जरूरत हो सो ऐबे हमारे इंदे का बात ऐसो रो पड़े जो हमारे मोबाइलों के बिना रोइंदो ही नहीं ऐबे ये एक बीमारी जे रहे बने। एलो का जो जमाना रचाले से विज्ञान और तकनीकी का जमाना रचाले मोबाइल है आदमी के बारे बजाय सोखे और तेज तो बाणे एलो मोबाइल फोन सीधो बात करनो के नहीं थी एबे इंदे लोई पढ़ा लिखायो मनोरंजन हो बैंक के काम भी इंदे लोई हो कोसी के किए काम धांधौला से जब फोनो दई होंदा समाचार देश दुनिया की जो खबर है से जी बाम के फोनो दी बैठो किचे खाणो पीणो को किचे बामणों को सामान या किचे गौरों को ओको सामान मंगाणो लो से जो बामो ऑनलाइन मंगाए सको। तो फोन मोबाइल के एलो के वक्त दे एक बजाय जरूरी एक चीज़ रह बने एलो बाद आदमी फोन चला मोबाइल चला से बा नुआ होला बाम बूढ़ा होला जेते थोड़ी मोबाइल के नाफे के बात है मोबाइल के जो फायदे के बात है इंदे के जो फायदे है से बजाय सो पर जे मोबाइल के नुकसान के बात करबे तो मोबाइल के जो नुकसान है से भी बजाय है। आमो मोबाइल जे स्वाड़ चुलोबे तो इंदे का असर हमारे शरीर दा हमारे दिमाग को दा हमारे पढ़ाई लिखाई दा हमारे काम धंधे दा साथ ही हमारे जो गांव समाज है तिंदा भी इंदे का गलत असर पड़ो। तो बात रखबे जारी तब तोड़ी तू सुनो एक सिरमौरी लोकगीत।

बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत सुनो, हामो लागा सुनने रह चाहो सरला ठाकुर के आवाज़ दो। तो ई भी तोड़ी आमो बात लेते करे मोबाइल तकनीक की, ई भी आमो देखे छे कैसे कैसे हमारे काम आओ और का का इंदे के फायदे असो। एबे बात करबे मोबाइल फोन चलाना लोई होने वाले गलत असर और इंदे के नुकसान के। तो सुविधा आगे इंदे का जो गलत असर हो, मोबाइल चलाना लोई जो नुकसान हो, से हो हमारे शरीर के कैसे नुकसान हो। जो सुविधा आगे जब हम फोन चलाओ तो इंदे लिए हमारे आँखी दो असर पड़ो। मोबाइल की स्क्रीन से जो लाइट आओ तिंदे लिए आँखी के नुकसान हो। जब हम बिस्त तोड़ी फोन चलाओ तो इंदे लिए हमारे आँखी दी पीड़, आँखी लाल फिरो, इंदे लोई झामरो देखियो, नज़र कमजोर हो जाओ और साथ ही मुंडो दे बिंदे पीड़ लागण के शिकायत हो सको। दूजो इंदे का जो गलत असर हो,

बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत सुनो, हामो बोलो छेड़ूरा खेलो, देवेंद्र ठाकुर के आवाज़ दो। तो अभी थोड़ी हम बात लेते करे मोबाइल तकनीक के दुष्परिणाम की। अब बात करबे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। तो जैसा हम सभी को पता, सो जैलो सो 22 तारीख 22 मई 2024 और 22 मई को बादी दुनिया दो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मना। तो सभी दागे तो सभी के जैव विविधता दिवस की शुभकामनाएं। तो देखबे कि जैव विविधता दिवस इंदे का मतलब का है, जैव विविधता का मतलब का है। जैव विविधता का मतलब हो सो जैव और विविधता दो शब्द ले रहे बने। जैव का मतलब है जीव और विविधता का मतलब है अलग अलग। मतलब जो जीव है तीन तो जो विविधता सो जो उस बाद जीव एक बात है उन्हें बाद जीव अलग अलग है इन्हें कही जैव विविधता बोले। अब जैसे ने हमारे धरती पांधी बातें बातें के जीव जंतु ओसो पेड़ पौधे ओसो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ओसो तीन के जो पारिस्थितिक तंत्र की विविधता ओसो से हमारे प्रकृति का संतुलन बनाने का हमारा सहयोग करो। मतलब धरती पांधी जो जीवन के बातें बातें रूप ओसो तीन दे कही जैव विविधता बोली। इन दे बॉय चे चोड़केल टू डाल कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जीव पानी मुझी रहने वाले जीव जांगलो खाड़ो नालो नदी पर्वत ये जो बाद्य चीज है से जैव विविधता दिया। जैव विविधता दे ऐसे आओ जे एक प्रजाति दे अलग अलग गुणों। प्रजाति का मतलब है जैसने गेहूँ है कुकड़ी है आम है तो असो तो ये गेहूँ कुकड़ी आम है पर इन्दे भी अलग अलग गुणों। एको गेहूँ मोट मोटे हो एको पतले हो एको आम बड़े हो एको छोटे हो ये जो कहा सो ये जैव विविधता सो वो कोई दुश हो जाए एक ही जागे दे भी बातें बातें के जीव जंतु।

पेड़ पौधे हो, जश्न एक ही जांगलो दे, शेर भी रो, बाघ भी रो, हिरण भी हो, तो इंदे कई जैव विविधता बोली। ऐवे बात कोरबे जे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस केशो केशो शुरू हो, तो इंदे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ है 1992 दे करे, और इंदे की शुरुआत है ब्राजील के रियो दे, जो बे पृथ्वी सम्मेलन रिता है तौलो इंदे के शुरुआत है। आगे जो दूस 29 दिसंबर को मनाती है परसन 2002 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने को दूस 22 मई राखो करे, ते तिंदे के बाद 22 मई कोई जैव विविधता दिवस मना। एबे देखो जय जैव विविधता दिवस मनाओ कही है इंदे के चावना का इंदे मनाने के उद्देश्य का, तो इंदे का सुविधा अगला जो चावना है इंदे का जो उद्देश्य है से ओसो जे लोग जैव विविधता के बारे दे जागरूक करने, क्योंकि लोगों को पता ही ना थी कि जैव विविधता ओ का है। वो कहीं दे का उद्देश्य है जासो जे जुन जे जीव जंतु है पशु पक्षी दुनिया से जो खत्म लागे होंदे, जिनके पेड़ ही खत्म जिनके बारे खत्म लागे होंदे, तीनों जीव जंतु बचाने ओके। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन ओसो जैसने कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, पानी है, तो ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन है इंदे का बेमार है कम से कम इंदे का प्रयोग करना। ओ का जो हमारा पर्यावरण सो हमारे इंदे का भी ध्यान रखना, पर्यावरण गांधा नहीं करनी ए जी हम अपने जिम्मेदारी पड़ते समझने। ओ का जो है जो जलवायु लागे बदलते जैसे ज़्यादा ही गर्मी लागे पड़ दे, ज़्यादा ही बरसात लागे होंगे, इंदे का कारण का सो प्रदूषण, तो जो हमारे जलवायु परिवर्तन है इतु भी हमारे कम करना। हमारे प्रतिबंधित जो जीवन का संतुलन हो सो से जब हमारे बनाया रखना, तो ये भी थोड़ी हम बात रहते करें कि जैव विविधता दिवस के उद्देश्य क्या है। तो अभी देखो कि भाई जैव विविधता के चुनौती का आकाश इंदे के खतरा किंदे किंदे सो सो, तो इंदे के जो ऐसे जंगल ले काटे, जलवायु तो परिवर्तन लागा होंदा, जंगली जानवरों का शिकार लगा होंदा, जिनके जंगली जानवर मारे दे ते तिंदे के बाद तीनों बेके दे, लोगों के जो जनसंख्या लागे बढ़ दे, पर्यावरण प्रदूषण लागो बढ़ दो, ऐसे बातें के बाद जो खतरे है ये जैव विविधता के खतरे हो सो। अभी देखो जैसे जैव विविधता बचाने के आम कोई का उपाय हो सो, तो इंदे बचाने के हम सुविधा के तो ज़्यादा से ज़्यादा डाल पड़ दे लाने, जो हम जो जानवर का शिकार लगा होता ऐसे शिकार आना से रुकना पड़ता, जो प्रदूषण है ये तो प्रदूषण कम पड़ करनो, और जो हम के प्राकृतिक संसाधन है तीनों संसाधन का भी कम से कम प्रयोग पड़ता करना, और साथ ही जो हमारे समाज है स्कूल सो तीन दे पर्यावरण पायो जागरूकता पड़ते फैलाने। तो एलो थी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, हम बात करें जैव विविधता दिवस के बारे दे बात रखबे जारी, तब थोड़ी तुम सुनो एक सिरमौरी लोकगीत।

बहुत ही बढ़िया लोकगीत सुनो, लागे जाना पूरा राजेश मलिक जी के लाइन दो। ऐबे सुनो देश प्रदेश की कुछ खास खास खबरें। एलो सो जैव विविधता दिवस ऐसे दिवसों के मौके पर दी प्रदेश के अलग अलग जगह दे जैव विविधता संभालना पाए जागरूकता कार्यक्रम रखे राखे। सिरमौर जिले के नौणे के स्कूल पीएम श्री कन्या पाठशाला दा हिमजनक मंच संस्था और ज्ञान विज्ञान समिति है अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन करा। इंदा स्कूलों के नाड़िया लेखन पेंटिंग और सामूहिक चर्चा जिसने प्रतियोगिता का बढ़ चढ़िया भाग लुआ। शिमला शहर के पिछले 7 दिवसों के पुंडे चाले उनके सफाई कर्मचारी की हड़ताल 42 चौके गए। प्रदेश भीतरे 3754 ग्राम पंचायतों दे 24, 28 और 30 मई को आंदे चुनाव जिंदे के जो प्रचार ऐसे भी जोरों शोरों से चाले उनका सौ। अगले चरण के मतदान के 24 और 25 को आंदी पोलिंग पार्टी रवाना। राजधानी शिमला सती चंबा कांगड़ा और लाहौल स्पीति दे लो थोड़े थोड़े छिड़काव लागा और साथी बागुर भी फेरे है जिंदे लोई लोगों के गुरमिश है दैनिक चौन बैठे। तो एबे हमारे कार्यक्रम का वक्त भी होए गुआ तुहें सोबे दो मुखे इजाजत एबे बेटियों में ओए तुआरे तो भी थोड़ी तुम सोबी के मेरी ढाल।

0: अभी आप सुन रहे थे सिरमौरी कार्यक्रम। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ। आइए अब सुनते हैं महासुवी कार्यक्रम।

आजकल रे वक्त दी जो सो हर मानछ के जो सो पढ़ाई लिखाई भरी जरूरी सो, चाहे से मर्द सो या छेवड़े सो। आज जो सो हर मानीचो सो पढ़ाई लिखाई हर मानछ के भरी जरूरी सो, ए वक्त जो सो शिक्षा रे प्रचार और प्रसार रा वक्त सो। और आजकल रे वक्त दी जो सो छोटियों रा पढ़ा लिखा होना जो सो भरी जरूरी सो, कहीं के पुराने वक्त दी छोटियों री शिक्षा दीक्षा जो सो अच्छी नहीं मानी जाओ थी। और छेवड़ी और छोटी जो सो पुरानी परंपराओं री जड़ों दी जो सो जकड़ी हुई थी, और तिथ वजह खा जो असो हमारो विकास भी जो सो नहीं हुआ तो, कहीं के जनता

जो सो पढ़े लिखे नहीं थे, पर एवे जो सो वक्त दूजो सो एवे छोटी, जो सो स्कूलों खेड्यो पढ़ने लिखने बसिए अपनों योगदान देशों रे विकासों के देव। और केवल जो सो एक पढ़े लिखे छेवड़े ही जो सो अपने टाबरे और आने आली पीढ़ी समाजों रा विकास मार्गदर्शन करी सकी, और छेवड़ी री शिक्षा ही एक जो सो विकसित देश और समाज चाणी सकी। पढ़े लिखे छेवड़े जो सो जीवन रे हर क्षेत्रों दी जो सो आगू बढ़ी सकी और सफलता पाई सको। केवल पढ़े लिखे छेवड़े ही जो सो देश रे विकासो दी आई मुश्किलों जिन्हें की समाजों रीकृतियाँ रूढ़ीवादी प्रथाएँ इनरा विरोध करियो, जो सो समाजों दू ऐसी बुरी चीज़ों ऐसी बुरी प्रथाएँ जो सो भारे उखाड़ी फेंकी सको। ता ही तो जो सो आजकल रे वक्तों दी छेवड़ियों छोटियों री पढ़ाई लिखाई गई खास ध्यान ढही जाओ। पुराने वक्तों दी छोटी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर आजकल रे विज्ञानों रे युग दी नारी री योग्यता ही तिनरी पढ़ाई लिखाई आसो, जिने की पढ़ लिखियो हमें कसी भी क्षेत्रों दी डेई सकी। तीने ही करी जो सो पढ़ लिखियो नारे जीवन रे हर क्षेत्रों दी डेई सको और अपनी प्रतिभा और योग्यता दिखाई सको। नारी शिक्षा या छोड़ियोरी शिक्षा रा उद्देश्य एक नहीं अनेक असो। पढ़ लिखियो छेवड़े आपू गाई भरोसा छाड़ियो अपने गुणों रा विकास करी सको, और आज पढ़ लिखियो छोटी जो सो बाध्य क्षेत्रों दी अपनी कामयाबी हासिल कर दी लगी रही। आज रे वक्तों दी नारी एक महान नेता समाज सेविका डॉक्टर निर्देशक वकील मास्टर मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिन्हें महान पदों गई जो सो अपनी योग्यता और क्षमता जो सो दिखाती लगी रही, और देशों रे विकासों दी जो सो अपने हर तरफ दू जो सो योगदान भी दे लाओ। शिक्षा जो सो सीखने और सिखाने री प्रक्रिया के ही जो सो शिक्षा बोली जाओ। शिक्षा रे जरिए जो सो माणिज ज्ञान कौशल कला बढ़ाइयो अपने गुणों दी जो सो निखार आनी सको, और शिक्षा मानछोरी बुद्धि बल और विवेक और अभी विकास करो, क्योंकि एक अनपढ़ माणिज जो सो गुरु रे समान हुआ। ताही तो आजकल रे वक्तों दी जो सो छोटी और पढ़ा लिखा होना जो सो भरी ही जरूरी सो। हमारे समाजों रे अच्छे आर्थिक और सामाजिक विकासों के छेवड़ियों छोटियों पढ़ा लिखा होना जो सो भरी जरूरी सो, और इनरे पढ़े लिखे ना होने दू और साक्षरता दर री कमी आने दू जो सो देश कमज़ोर बनो। और छोटियों री शिक्षा री बेहतरी के जो सो भारत सरकार कई योजनाएं जिन्हें की सर्व शिक्षा अभियान इंदिरा महिला योजना बालिका समृद्धि योजना आसो। परिवार समाज और देश री उन्नति के छेवड़ियों री भूमिका जो सो महत्वपूर्ण आसो। एक पढ़े लिखे छेवड़े ही देश समाज और टाबरे री दी खुशहाली आनी सको। नारी शिक्षा दू जो सो बौद्धिक विकास हुआ, और जित वजह का जो सो समाज और व्यवहारों दी भी सरसता आओ। नारी शिक्षा दू हमारे संस्कृति रे ऊर्जा और विकासों रा भी संचार हुआ। जब वे कभी भी नई समाज और स्थापना की जाओ तो पढ़े लिखे छोड़े ही जो सो एक बेहतर आकार और व्यवस्था दे सको। ताजी एवे सुनी ले एक लोकगीत।

तेरी शांगरी कुलवाली दी। गायक कलाकार थे मनोज कुमार। भाग दौड़ बड़े जिंदगी दूजो सो कुछ वक्त गाड़ियो, अगर हमें अपने दिनचर्या गाई नज़र पाई तो ज़्यादातर वक्त जो सो हमारो मोबाइलों और फ़ोनों साथी ही बीतो। बड़े मान छोरी जो सो इन चीज़ों रा असर जो सो हमारे छोटो गाई भी पड़ो, जित वजह का जो सो छोटो रा बचपन मिल मोबाइलों

गरी गिरफ्त दीजो ससुले सुले गरी आंदो लगेरो। और छोटोरा बाल बन बदले लागो और हमके पता ही नहीं चल दो कि हमें बातें जिनों की जानी की स्मार्टफोन जो सो टेबलेट और दूजे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों साथी जो सो आजकल ही रे छोटू बड़े हुई लगे। पर चिंता री बात ए असो कि स्क्रीनों गई ज़्यादा वक्त बिताने दूजो सो छोटू रे विकासशील दिमागों गई जो सो भरी असर पड़ो। मोबाइल जो सो ज़्यादा देखने दू छोटोरी सीखने री क्षमता गई असर पड़ो और साथ ही छोटोरे सामाजिक कौशल व्यवहार और भावनाओं गई भी असो जो सो असर पड़ो। जिंदे दू जो सो वजन नज़र और बादे सेहतो दू जुड़ी कई तरह री बीमारियां भी होई सको। मोबाइलों गाई जो सो ज़्यादा वक्त बिताने दूजो सो आक्रमकता और दूजे आचरण संबंधी समस्याएं हुआ और जो छोटू देड़े दुई घंटे दू ज़्यादा मोबाइल देखो तो तीन दी जो सो रोश और मोबाइल ना बैठने गाई चिड़चिड़ा होने री जो सो ज़्यादा संभावनाएं देखने के बैठो। और जो छोटू जो सो अपनो वक्त ज़्यादा तई मोबाइलों गाई बिताओ और दूजे मानछो साथी कम बातचीत करो तो तिंदी इसमा जो दी तालमेल छाड़ने दी जो सो भरी परेशानी हुआ जो कि जीवनों दी आगू चलियो जो सो सामाजिक और रिश्ते संबंधी कई समस्याएं जो सो पैदा हुआ। नीच जो सो छोटो रे सामाजिक तीन रे मन मस्तिष्क और अच्छे विकासों के जो सो भरी ज़रूरी सो जो कि सीखने याददाश्त भावनाएं और ताई व्यवहार बातें मानसिक जो सो सेहत हो गई अपनों असर पाओ। सुतने दू गेणियों जो सो मोबाइल देखने दू छोटो रे नीजो दी बदलाव आओ और जित करी जो सो नीज कम होने शुरू हुआ। जो छोटू जो सो मोबाइल ज़्यादा देखो तिंदरी आँखों दी जो सो आँखी दी जो सो अपर वर्तनीय नुकसान ज़्यादा हुआ। लंबे वक्तों ताई स्क्रीन गाई रोने दू जो सो डिजिटल आई स्ट्रेन हुआ और जिंदगी की जलन खुजली और थकी हुई आँखी शामिल हुआ। नीली रोशनी रेटिना कोशिकाओं के नुकसान पहुंचाओ ए नज़दीकी नज़र भी कमज़ोर करो। और लंबे वक्तों ताई स्मार्टफोन टैबलेट झुकियो बेचने दूजो सो छोटो रिविकसित होंदी लगेरी रीड री हड्डी गाई असर पड़ो जो तीन रे जीवन भर जो सो तीन खे पीठ दर्द और सिर दर्द जिनी बीमारियां हुआ। जो छोटू मोबाइल या टीवी देखते बेरी नाश्ता करो रोटी खाओ तो तीन एजी बातों रा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रोंदो कि तिनिए का खाए लाओ। ताही तो जिन छोटों के मोबाइल देखते बेरी खाना खाने री आदत हुआ तिंदी ज़्यादा ताई वजन बढ़ने री संभावना भी ज़्यादा हुआ और मोटापे दू मधुमेह और जोड़ों री समस्या और हृदय रोग जिनी बीमारियां हुई सको। ताजी एवे गेणियों सुनी ले एक लोकगीत।

और एक आटे काकड़े गाय कलाकार थे रोशनी शर्मा। तां जी अजकल रही जिंदगी व्यस्त जिंदगी दी, जो सो हमें अगर औकड़े नज़र अपनी दिनचर्या गाई पाई तो ज़्यादातर मारो वक्त जो सो मोबाइलों गाई ही बीतो, और इन बादी चीज़ों रा असर जो सो हमारे छोटो गाई पड़ो। ज़्यादा मोबाइल देखने दू जो सो तिंद्रे सामाजिक और भावनाओं का ही भरी असर पड़ो, और जो छोटू ज़्यादा मोबाइल देखो तिंद्रो व्यवहार जो सो चिड़चिड़ापन और ज़्यादा केले दी रहना और रोनो और नीजोरी समस्या और नज़र कमज़ोर होने और लंबे वक्तों ताई जो सो मोबाइल गाई बेचने दू जो सो रीढ़ री हड्डी गाई भी असर पड़ो, और ताई वजन री समस्या भी हो सो वजन बढ़ो, और इन बादी चीज़ों रा असर जो सो छोटो गाई पड़ो। अबे कि किने कोरी जो सो हमें अपने छोटो री जो सो मोबाइल री आदत कम करी सकी। छोटो रे मोबाइल दी लत छुड़ाने के आपू भी बादे दुगेणियों अपू गाई नियंत्रण छाड़नों भरी जरूरी हो सो, क्योंकि छोटू जो देखो से ही सीखो। एक घंटे ताई फोन देखने रा वक्त जो सो छाड़नों चाहिए।

छोटुओं के जो सो खाना खांदे बेरी भी फोन नहीं देनो चाहिए। और मोबाइल री लत छोटुओं दी दूजी कामों दी रुचि इच्छा कम करो, जिंदे दूजो सो कई नई चीज़ें सीखने रे मौके भी खत्म हुआ। सुले सुले करी छोटुओं दी मोबाइल री लत जो सो हमें कम कर सकी करी सकी और तिंद्रे तिंदी जो सो दूजी चीज़ों दी रुचि बढ़ाई सकी, जिन्हें की बगीचे दी देने सैर करने पैदल हाँडनो और रस्मा जो साथी जुड़ाओ बढ़ाने के तीन ज़्यादा प्रेरित करने चाहिए। कई माता पिता जो सो अपने काम टाबरे और अपने जीवनों दी तालमेल बिछाने दी मुश्किल हुआ, ए बादी चीज़ों हमारे जीवनों रा एक खास हिस्सा हो, सो अपने छोटो साथी अच्छा और सही तालमेल छानने के वक्त देनो जो सो भरी जरूरी है। सो ता ही तो छोटू आजकाली जो सो केले पंदू बचने के स्मार्टफोन और सहारा ले। हमें छोटोरी चारों चौबिल की विकासों के जो सो 3H सूत्रों रा प्रयोग करी सकी, जिनरा मतलब सो हाथ दिल और दिमाग, जिंदे दूजो सो छोटू सीखो जो तिनके स्थाई ज्ञान देओ। पर आजकल ही जो सो छोटू मोबाइल दू सीखो और जिनरे जो सो भरी नुकसान आसो। ताजी एबे वक्त सो कुछ समाचारों रा। कुल्लू जिला उपायुक्त अनुराग चंद शर्मा जी ने जिले दी नशा रोकथाम के व्यापक अभियान चलाने के अधिकारियों के निर्देशन दिने। कुल्लू दी राष्ट्रीय नार्को समन्वय समिति री जिला स्तरीय बैठक री अध्यक्षता करदे बेरी बोलो कि पंचायत स्तर हो गई लगातार निगरानी जन भागीदारी और सामुदायिक जागरूकता रे बिना नशे रे खिलाफ अभियानों रा असर कम होला। तिनिये बादी पंचायतों दी नशा निवारण समितियों रे सक्रिय संचालनों गाई खास जोर दिनो। दूजे खबर असो कि राजधानी शिमला सहित चंबा कांगड़ा कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले दी आज हल्की बूंदाबांदी और हवा चलने दू मानछो के लू दू औकड़े राहत भेटे। मौसम विभाग केंद्र शिमला रे निर्देशक शोभित कटियार जी ये बोलो कि पश्चिमी विक्षोभ रे चलते मौसम दी बदलाव आसो और अगले दुई देश भी प्रदेश रे अलग अलग इलाके दी ओले और बारिश री संभावनाएं आसो और 24 मई बासिये प्रदेश दी मौसम बदलने और कई जगह तापमान बढ़ोला। ताजी एवे सुनी ले एक लोकगीत।

किन्नौरिंग बाईसी नमस्ते जूले टाशी देलक स्वागत हो किन्या से किनो किन्नौरिंग प्रोग्राम को मो बाईसी गदन कुमारी तुरुक्सु किन्नौरिंग प्रोग्राम रेशे साजिर तेकने हो दोक बाईसी किन्या दाम ते चाहे ग आशा लान तेकने हो किन्या से की राजी खुशी सुनीतिच दंग सी दोक प्रोग्राम निरन चो नीतिच बाईसी दोक तुरुक्सु प्रोग्रामो शारे शारे गिथंगा ताकाशी दी तो दोक आइथ खास खास खबर नंग एके दाम दाम बताली काशी तो न्यो बैसी खैंता जू अलेगा जू तोलिंग शोंग सु न्यूंग पीढ़ी जू बौधी वाश खैंता जू एकल परिवारो तोशमु खुशी लानो अमा बोआ आते बाया नंग तोशमु मेओ मदे दो थू थू लोना तंगमा खेसी तोशमा तंगमा दोक आनेगा नु जीवनो स्वतंत्रता नंग एके व्यक्तिगत निर्णय उन्नु आज़ादी पोरे दो मदे हतो तांगे सी जू तोलम छोंग सु न्यूंग पीढ़ी पेरा नंग एके तो शमु मेओ मदे बैसी जू हुनोक सुबेरंग ख्यांता जू काशानो जू जीवन वाल तेज हजस मी से ही बाग दौड़ियो लगे गया जू हजस की बाग दौड़ियो काशा होत्रा ओम्स को दौदान्यो कि जू से काचिंग बदलाव तांगे मोदो दू मी

बदल्या शो मीनू सोच बदले दो चेई होतरा हसल हसल बदले दो तांगिंबो दो दू हदेसी दोग जू कशानू नाता रिश्ता ली कमजोर हाचो बेओ आयत जू मीनू कोने कम हाचो नाता रिश्ता नंग छुक्षमिक कम हाचो दोग हनी जू छांगानू कोमो संस्कारानू ली कमी तांगिंबो दो दूनियो बैसई खेंता जू तोलिंगशोंग छांगा आमा बोआनू बाता मारोंचो तेक पेरानू खाकंगा सरेओ तेके नू इज्जत मारानू जू वाल जोरियो बातंगा चस्तूनियो बैसी जू बदलाव लोड़ने जेता दो घर पीढ़ियो हाचो ही तोशित लेकिन हुनोक्सु जू न्यूंग पीढ़ियो से जू बदलाव कैस बोधी जू दोक गलतियाँ हाचो तांगी मोदो दू थूलो ना तंगमा ख्यांता जू हुनोक्सु बेरंग मदे जू विज्ञानस वाल बोधी जू उन्नति लांशित तोलिंगशोंग एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन तोक दो कोमो इंटरनेट उस सुविधा पर दो यानी जो इंटरनेट उ अंधाधुन जो अनुसरण लाने को वजह जो इतोक युवा गानों दिनचर्या प्रभावित हाचो मदे यंग मु सार्श मु थीसी समय मास हुशीद अच्छा गानों समय बदले दो हेड बास्किंग खेंदा जो घाटो छांगाली आ बतन मानेस्तंगी गुदानो फोन आ गयो हदेसी दोक जो बॉडी फोन ख्याशमिंग दें युवा गानों को मो चिड़चिड़ापन बोदो आई दोक सहनशील तोली कमी बोदो आने गानों खुशी धामु मापरेन ना दोक वामुं कदम थो इदंगे आमा बुआ आते बायान नंग दाशो खेसिया तोशो मदे पैसी दोक जुबा तंगाशा हेताशे काटता पैसी दो ओम्स इत गिथंग रोंचे रोंचीज बैसे ही गिथंग।

antioxidant, antibacterial ning eki takhung kumu ai dokai vitamins linis pholangu tor den zami ku alawa takhung kishmish munakka juice jam ning jelly deske zamik cheese li zuryas made besi dok halinga takhung toling song har season o pore se pholang ne ho dok ai takhung kai kisam ni toling song tangi modo tu halinga ju kumu rok takhung shuik peak rak ning gulabi kisamu takhung amade जूसे ही दाखंग अनुकुमो रोग दाखंग सबसे गुणकारी नाशित ने हो रोग दाखंग जुटे हो ग्लूकोस शुगर नंग आयरन कमी तंग पूरा लंस मदे वैसे तो क जो दाखंग जामु नरम नंग रसीला फलंग नेमी को वजहस चाहे तो चिकजा दे हो बुजुर्ग पेरंग दे हो तो क से किनु वाल एम देस मदे बैसी ख्यांता जो दाखंगु ला जवाब स्वाद तानी सिनीज यानी दाखंग जामु तेत्रा एम होतराई जू कुमो सेहतु खजाना ली तोस मजे कमजोर मीनू तांगिस्ता दाखंग वरदान नार छीद मदे बैसी दोक कालता दो खास खास खबर ली गई किन्या नू सुनिया चकने हो कुल्लू जिलो उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा जीस जिलो कुमो नशा रोग्यामु तांगिस जो अभियान चालियामु तांगेस अधिकारियों नु निर्देश रणशीत कुल्लू राष्ट्रीय नार्को समन्वय समिति जो जिला स्तरीय बैठक अध्यक्षता लानोई आनेस रिंगशीत की जो पंचायत सत्र देन सतत निगरानी जन भागीदारी नंग सामुदायिक जागरूकता मानिमा नशो खिलाफ अभियानु जो प्रभावी रूप रनम महान शोय आनेस तक सही पंचायतों नो नशा निवारण समितियां नो सक्रिय संचालन देन खास बल शेषित ने हो आयत खबरतों ने हो राजधानी शिमला नंग एके चंबा कांगड़ा कुल्लू नंग लाहौल स्पीति जिलो तुरु दोक दाइस दाइस लागेस बुन नंग एके लान सालन निक देंस मीनू दोक रावंक्योस दाइस राहत परेशित मौसम विज्ञान केंद्र शिमलो निदेशक शोभित कटियारस रिंगशित की जो पश्चिमी विशोभु सक्रिय हाजमिक देंस मौसम को मोचू बदलाव बुशीद दंग सी दोक नासम रोमी ली जो परदेशु खेसी खेसी जागा आनो शोरू नंग एके जो लागेस बुन्नु संभावना जत्याशीत आने रिंगशित की जो खेंदा दोक पाइंस निपी हे दोक मौसमों बदलाव हाचो ये जूतस दोक कई जागानो तापमान बढ़िया तो ये वैसी दोक जूता ते के न्यू खास खास खबर काजता वैसी दोक हुन गड़ी से इशारा के रो दू काजता वैसी दोक बेरंग बेरंग आयत गिथंग रोंचे रोंची ज वैसे ही गिथंग

अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सूरत राम हरद्वान व साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

मामराज व साथियों की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश के लोकायुक्त चंद्रभूषण बरोवालिया ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर बरोवालिया ने राज्यपाल को लोकायुक्त कार्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और संस्था की कार्यप्रणाली व जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। कविंद्र गुप्ता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकायुक्त संस्था की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सुशासन को सुदृढ़ बनाने में लोकायुक्त की भूमिका अहम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्था भविष्य में भी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जन विश्वास के साथ अपने दायित्व का प्रभावी निर्वहन करती रहेगी। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्याशी लोगों से अपने अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और तीन राज्यों के साथ लगते इस जिले में बाहरी राज्यों से शराब तस्करी की संभावनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि जिले के अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
1: 20, 28 और 30 तारीख को पंचायत लेवल इलेक्शंस होने हैं, तो हमने जो फोर्स की रिक्वायरमेंट दी थी वो फोर्स आने वाली है और साथ साथ हमें होमगार्ड के लोग भी इसमें डिप्यूट होंगे। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे नाकाबंदी रहेगी, रात को पेट्रोलिंग रहेगी और जैसे हमने राजगढ़ में भी हमने 140 पेटियां शराब की पकड़ी है, तो उसी तरीके से हमारे जो प्रयास है कि बाहर की शराब या कोई जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
0: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जन

0: कल्याणकारी योजनाओं व विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में सड़क निर्माण और इन्हें पक्का करने की नई तकनीक के बारे में जानकारी ली ताकि इसे हिमाचल में भी उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोक निर्माण व शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर्नाटक में शहरी विकास व अधोसंरचना निर्माण में अपनाए जा रहे सफल मॉडल्स के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों का दोनों सरकारें अध्ययन करेंगी। राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज हल्की वर्षा व हवाएं चलने से तापमान में मामूली गिरावट आई है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिली है। कुल्लू में आज दोपहर तक जोरदार बारिश हुई, जबकि रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और कल भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने कहा कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
1: ये जो बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक यानी कि 22 और 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है, वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जिलों में जो है हीट वेव की भी कंडीशन देखने को मिली है, जिनमें से हमारा शिमला, ऊना, बिलासपुर, सुंदरनगर और नाहन जैसे इलाकों में हीट वेव की स्थिति देखी गई थी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में अब आप सुनेंगे बिलासपुरी कार्यक्रम।

पुजी गुरे तुम्हारा प्यारा बिलासपुरी प्रोग्राम लेकने सबने सुनने वालों पून मारा प्यार भरा नमस्कार। तजी आज के प्रोग्राम में जो आ तुहा खातर प्यारे प्यारे गाने भी लंदुरे में तुहा जो सुनाने तुहा प्यारे प्यारे लोक गीत खास खास खबर भी तुहा सुनानियाँ कने लियाणियाँ प्यारी प्यारी गल्लां बातां भी तुहा कने। तजी अजकल देखो भी जो तौंदी है सिवड़ भरी भड़की उरी अज तो थोड़ी जी रात भी मिली भाई बरखा रे छिट्टे जे पोई भी गुरे कने बदल जे भी होई गुरे है पर तौंदी जो ही से होनी भी क्योंकि अजकल मई रा महीना चलूरा। तो जी एड़े च अपनी सेहता की खूब संभाल अहां रखनी चाहिए। पानी जो आ से अहां जो उबालूरा ही पीना चाहिंदा। साफ पानी पीने ते बड़ भरी बीमारियां जो हैं से हरी खत्म हो जांदियां कने पानी उबालूरा कने ठंडा कितरा होना चाहिंदा। फ्रिजा रा पानी पीने ते बचना चाहिंदा। कड़ोलुए च देखो जे संजकी अहें पानी रखिए तो सवेरे रे टाइम जो असें पूरा दिन बड़ भरी ठंडा अहां जो मिलता रहा कने सेहती खातर भी से खरा होंदा। अजकल इं भी फल फ्रूट खाने भी जीव करता रहा तो फल फ्रूट एड़ा नहीं भी बाजारा ते लंदे कने तत्ते तत्ते से खाने शुरू करते तिन्हों पिछले दिन ठंडे पानी च रखा कने साफ किया अच्छे ढंगा कने फेरी तिसते बाद कट्टी कने साफ हत्था ने ता तिन्हों खाद्या। बेचारा रे आधे कटुरे फलों लियाने कई बार जीव कर जा पर तिना ते बचना चाहिंदा कई बार से हरी सेहती जो खराब भी करी देंदे। खाना जो आ से इं कोई भी मौसम होगा तो इस ताज़ा खाना ही खाना चाहिंदा बाईसा ही खाने ते बचना चाहिंदा पर खासकर जो आ अजकल तौंदिया रे टाइम जो आ से सवेरे रा खाना सवेरे ही खाई लेना चाहिंदा। कई बार हुआ पे दिन रे टाइम जे अहें तिसो खाने लगिए तो तिस कई बार बास पेगरी हुआ या लेसा जी लग रही हुए तिसते चलने।

गंगा देई उरी आवाज जिथाए लोकगीत। तो छोटी जी गल बात लानी जी, भी शरीर खातर जो असें सेहत तारी संभाल जी अहें रखनी तो खेल कूद जो इसे बड़ भारी फायदेमंद है। हर माणू जो आसे चाहता भी अहें तंदुरुस्त रहिए, शरीर हारा ठीक रहिए। इं भी जो आसे एक स्वस्थ शरीर च ही स्वस्थ दिमाग आंदा, यानी कि खरे दिमागा खातर खरा शरीर बड़ भारी फायदेमंद होंदा। रोगी शरीर रोगी मानसिकता जो पैदा करता। अहीं भी देखिए भी जे बीमार हो जाइए थोड़े जे भी तो आरा दिमाग जो ऐसे अल पल सोचने लग जा, पता नहीं किती किती री गल्ला जो ही ऐसे जो बुरियां बुरियां ख्याल आने लगी आंदियां। वैदिक काला च जो आसे आहरे पूर्वज जो थे से भी बोला है भई पहला सुख निरोगी काया, ता सुख ताई मिलिसका जी भी हमारा शरीर जो आसे स्वस्थ होंगा निरोगी होंगा। खेल कने व्यायाम जो है शरीर खातर बड़ भारी जरूरी है। जितनी जरूरी अहाँ जो रोटी है या उतना ही जरूरी जो अहाँ खातर योग व्यायाम या कसरत भी होंदियाँ। वैसे भी देखा जाओ तो पता लगता भी शरीर जो

व्यायाम योग वगैरह आपू ही पहले तो ही पता होंगे। पशु पक्षी भी आपू अपने ही आप व्यायाम जो से करते रहेंगे। खेलने जो अस खूना का दौरा भी बढ़ता, मांसपेशियां मजबूत होंदिया, कने रोगों कने लड़ने की शक्ति जो इसे भी बढ़ती रहती। इतने दिलारी बीमारियां सुगर मोटापा वगैरह भी घटता, मानसिक तनाव भी घटता, कने मन जो आ से बीमारा ठीक रहता, कने मजबूत हो जाता। खेल की बार जीत कने हार का सामना करना जो आ से भी आ जाता, जिसते जो अहाँ जो कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाओ तो तिना ते अहाँ जो बाहर निकलना जो आ से भी आपू ही आ जाता। तो शरीर की जो संभाल रखनी जी तो खेलना तो बड़ भारी जरूरी है।

ता जी लोकगीत सुनया तुहें जोगिंदर सिंह होरी री आवाजा च। तो गल करे रहे जी अहें खेलने रे बारे च। खेलने ते जो आ से माणुआ रे व्यक्तित्व रा विकास होंदा कने जिंदगी जो इसे बड़ भारी खरे टंगे ने कटदी। हर खेल अहां जो मुश्किल टाइमां ते बाहर निकलना सिखांदा। आम तौर पर ज़्यादातर माणू जो ऐसे बैडमिंटन वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह खेलना पसंद कर दे। कंजे छोटे न्याणे री गल करी अहें तसे छोटी छोटी खेलना पकड़म पकड़ाई ऊंच नीच का पापड़ा एड़ी एड़ी खेलना खेल लाए कने अपने जो खुश भी रखा है। ता देखो जी भई सबनी जो खेलना भी जरूर चाहिंदा काम भी मेहनत भी जरूर करनी चाहिंदी। कने अब जो ऐसे प्रोग्राम मारा टाइम भी होए रहा ता तुहें मुझे प्रोग्राम मारी पूरा करने की इजाज़त दो जी। नमस्कार।

कुल्लू कार्यक्रम सुनने वाले सभी लोग अल गुलपाल वर्मा फिर के नमस्कार। आज के कुल्लू कार्यक्रम में थारो सभी स्वागत आसा। तो आज हमारे अपने कार्यक्रम में कुछ गलबात करनी रहा कि मारो जो संविधान रहा सो हमारे देशी नागरिक अल हम सभी ले कौन कौन अधिकार दिया और साथ ही हर नागरिक के कौन कौन कर्तव्य आसा। साथी मारे कुछ होर तो मलेरा जानकारी देनी विश्व जैव विविधता दिवस बारे दी और साथी बढ़िया बढ़िया कुल्लू लोकगीत भी हमारे कार्यक्रम में शामिल करने। तो कार्यक्रम में शुरुआत मारे कि कुल्लू लोकगीत संगे करनी रहा तो ले सभी के पहले एव कुल्लू लोकगीत आनंद ले आ।

स्वतंत्रता आसा जोण हर व्यक्तीले समाजादी इज्जती सोंगे गरिमापूर्ण जिंदगी जिणे तई प्राप्त हो और इते माध्यम के इंसान अपनी जोण इच्छा तीना व्यक्त करी सका अपनी जोण स्वतंत्रता तेते रक्षा करी सका और जे जरूरत पड़ा त न्याय भी प्राप्त करी सका। त हमें जे नागरिकाए ले जोण प्राप्त अधिकार आते थे हमें होर आगू चर्चा करी त दुई प्रकार थे मुख्य रूप के रहा कुछ कानूनी अधिकार और कुछ मौलिक अधिकार। त कानूनी अधिकार रा संस्था फेरा के बना और जो कानून बना ते माध्यम के प्राप्त हुआ जो कि शिक्षा अधिकार सा सूचना अधिकार आ साथ ही जो मौलिक अधिकार रहा जे हमले मारो संविधान दिया और न्यायालय इतने रक्षा करा। ते हमें अपने संविधान के जो मौलिक अधिकारों जी वो जिक्र रहते थे गल करी तो छ प्रकार मौलिक अधिकार रहा एक समतो अधिकार स्वतंत्रतो अधिकार शोषण विरुद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंत्रतो अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और जो संवैधानिक उपचार रहते तो अधिकार। समतो अधिकार मतलब अनुच्छेद 14 और 18 दे रहा तेते अंतर्गत देश हर नागरिकालय जो अधिकार आ कि से कानूनी नज़र दी सब बराबर आसा और साथ ही जो स्वतंत्रतो अधिकार आ सौ अनुच्छेद 19 के 22 ते तो जिक्र रहा और तिदिली होना सा कि अपने विचार अपनी अभिव्यक्ति कोई भी आंदोलन करने कोई संघ बनाने हो अपना घर बनाने हो कोई व्यवसाय चलाने इतो हमले अधिकार मारो संविधान दिया हर नागरिक ले। साथ ही शोषण के विरुद्ध अधिकार रहा अनुच्छेद 23-24 दी जिक्र सा कि इंसान ने तस्करी बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी जे जे कोई मामले सामने आ ता शोषण के विरुद्ध जो अधिकार रहा तेथे तहत कार्रवाई इना मामले जो स्लिप्त तीन विरुद्ध रहा हो सका। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25-28 तीन तो जिक्र रहा और इत तहत देश हर नागरिक कोई भी धर्म मानने तई स्वतंत्र आसा सो कोई भी धर्म मान सका तेते चर्चा कर सका तेतो प्रचार कर सका और तेतो पालन रहा कर सका। साथी रहा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तहत जे कोई अल्पसंख्यक आसा तिनाले अपनी संस्कृति बचाने अपनी शिक्षा अपनी भाषा सुरक्षित डाने रा प्रावधान आसा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इत तहत रहा देशी हर नागरिक ले जो अधिकार आसा कि सो कोर्ट ले नहीं सका न्यायालय ले नहीं सका और अपने कोई अधिकार जते के छीना तेते सो सुरक्षा कर सका और अपने पक्ष देरा न्याय प्राप्त कर सका। ता इन अधिकारों एक ही नागरिक की जिंदगी दी बहुत महत्व आसा। मौलिक अधिकार सिर्फ इंसान ने व्यक्तिगत विकास से ही सीमित नहीं थी बल्कि लोकतंत्र जो मूल आधार रहा सो जे मारे मौलिक अधिकार आसा। इतने वजह के इंसान रहा देशों जो नागरिक सो निर्भीक होया निडर होया अपने विचार व्यक्त कर सका जैके दी अन्याय होने लगन तेते खिलाफ आवाज़ उठाई सका और देशी विकास दी अपनी भागीदारी निभा सका और जै इन अधिकारों हनन हुआ ता कोई भी नागरिक रा अदालती दिना या न्याय प्राप्त कर सका। ता अधिकारा साथी साथी रा मारे जो कर्तव्य ते तो भी बराबर महत्व आसा। अधिकार एक ही फिर यदि हमें स्वतंत्रता दिया बहुत सारी सुविधा दिया तो ते जो मारे कर्तव्य है यह गल सुनिश्चित करा कि देश प्रति मारी भी कोई रा जिम्मेवारी आसा। ता जो सा जिम्मेवारी आ से स्पष्ट की नहीं रहा मारे जो 11 मूल कर्तव्य आसा तेत और इतने हमें जो जिक्र करी तो संविधान पालन करनो तेते जो आदर्श आसा तेते तहत जो संस्था बनी नी जो मारो राष्ट्रीय झंडो आ मारो राष्ट्रगान आ इन सभी चीज़ों हम सम्मान करनो और जो स्वतंत्रता आंदोलन जो आदर्श रहा से हमेशा अपने दिल दिडाने तेते इज्जत करनी मारे देशी प्रभुता एकता और अखंडता तेते रक्षा करने ते हमेशा तैयार रहनो और देश रक्षा करनी राष्ट्र जो आह्वान आसा जे भी आ तेते तई हमेशा तैयार रहनो। साथी आपू में सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा बढ़ाणो और जो महिला तीन विरुद्ध कोई भी जो अपमानजनक व्यवहार आ सो रोकनो। साथी जो मारी संस्कृति आसा जो समृद्ध संस्कृति भारतीय संस्कृति तेते रक्षा करनी और प्रकृति प्रति पर्यावरण प्रति मारो दायित्व बना कि तेते हमें रक्षा करी और तेते संरक्षण करी संवर्धन करी।

साथी वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता और सुधार जो भावना रहा तो विकास करनो और जो सार्वजनिक संपत्ति रहा तेते रक्षा करनी और हिंसा के हमेशा दूर रहनो। व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधि रहा तेत भी उत्कृष्टता आनी और 6 से 14 वर्ष तक जो बच्चे रहा तिनाले शिक्षा सुनिश्चित करना जो भी भारतीय संविधान जो मूल कर्तव्य ते तेरा शामिल आसा ता गलबात मारे आगू भी करनी रहा इत बीच मारे अब एक होर कुल भी लोग छोड़ना।

0: for advanced consultancy support in tunnel engineering, slope stability and capacity building. Minister of Road Transport and Highways in a statement said this collaboration reflects NHAI's commitment to develop and maintain India's national highways to global standards by leveraging NGI's internationally recognized expertise in geotechnical engineering and natural hazard mitigation. Under the MOU, both organizations will collaborate on research and development initiatives related to reduction of natural hazards. A mobile application, Jeevan Joint Elderly Empowerment and Virtual Assistance Network, has been launched today to strengthen support systems for senior citizens across the country. Union and Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virender Kumar launched this application in New Delhi. The mobile application Jeevan provides a range of features. And that is the end of this news bulletin.
1: पर आप हैं FM शिमला के साथ। पेश है किसान और बागवान भाई बहनों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। इस अंक में मैं हूं कुलदीप।
3: और मैं हूं दिनेश ठाकुर।
2: दिनेश जी, कैसे हाल चाल है आपके?
3: बिल्कुल बढ़िया कुलदीप, और उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे और हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने सब्जियों के कार्यों को निरंतर रूप से कर रहे होंगे।
2: जी बिल्कुल,
3: इन दिनों हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के खेतों में फल बागीचों में काफ़ी कामकाज है। किसान भाइयों, धूप भी काफ़ी अच्छी लग रही है। दिन के समय में धूप ज़्यादा रहती है तो आपने ध्यान देना है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और दिन के समय जब ज़्यादा धूप रहे तो काम में थोड़ा सा आराम ले ले और उसके बाद सुबह और शाम के समय अपने खेतों में काम को पूरा करें।
2: जी, तो देखिए दिनेश जी, सबसे पहले अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को आज के मुख्य मुख्य आकर्षणों की जानकारी हम देना चाहेंगे। देखिए, काम की बातों के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे दलहनी फसलों की उन्नत किस्मों के बारे में, और साथ ही साथ देखिए दिनेश जी, हम प्यारे प्यारे लोकगीत भी अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के लिए लेकर आए हैं, और एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण जिसका विषय रहेगा हाइड्रेजिया, हिमाचल प्रदेश में नई पुष्पीय फसल। और अंत में चलते चलते अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देंगे कल के मुख्य मुख्य आकर्षणों के बारे में भी।
3: जी बिल्कुल, तो कुलदीप, सबसे पहले बात कर लेते हैं दलहनी फसलों की उन्नत किस्मों के बारे में। हमारे किसान भाई अपने खेतों में साग सब्जियों के अलावा दलहनी फसलें भी लगा सकते हैं, और दलहनी फसलों से वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
2: जी,
3: दलहनी फसलों में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो फसलें आती है, माश, मूंग, कुलथी, राजमाश, अरहर और लोबिया, ये दलहनी फसलें हमारे किसान भाई लगा सकते हैं।
2: जी,
3: दलहनों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण ये अन्न पर आधारित भोजन को अधिक पौष्टिक बनाती है। दलहनों में प्राय 17 से 24 प्रतिशत तक प्रोटीन की मात्रा होती है, जो कि अन्न की फसलों से 2 से 3 गुना अधिक है। खरीफ दलहनों में माश, कुलथी और राजमाश प्रमुख फसलें हैं, जबकि अरहर और मूंग को भी कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है, परंतु प्रति इकाई उपज काफ़ी कम है, जिसके प्रमुख कारण अधिक उपज देने वाली विभिन्न दलहनी फसलों की विभिन्न क्षेत्रों के लिए किस्मों की कमी, कीटों व बीमारियों का अधिक प्रकोप और फसलों की अच्छी खेती के प्रबंध पर कम ध्यान दिया जाता है।
2: जी, तो देखिए दिनेश, हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत कर रहे हैं दलहनी फसलों की उन्नत किस्मों के बारे में। तो देखिए, आपने प्रमुख जो दलहनी फसलें हैं उनकी जानकारी दी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें उन्नत किस्मों की, तो सबसे पहले हम माश की जो उन्नत किस्में हैं उनकी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि कौन सी जो अच्छी किस्में आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। देखिए, अनुमोदित किस्मों में माश में आता है हिम माश 1, UG 218, PDU 1 और पालमपुर 93। बात करें हिम माश 1 की, तो ये किस्म समपर्वतीय और निचले पर्वतीय सम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। ये भूरे से काले दानों वाली तथा अधिक पैदावार देने वाली किस्म भी इसे माना जाता है, जो एक समय में पककर तैयार हो जाती है। ये किस्म लगभग 74 से 76 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये माश की प्रचलित किस्मों UG 218 तथा पंत U19 के मुकाबले पीली मोज़ेक बीमारी के लिए अधिक रोग प्रतिरोधी किस्म ये मानी जाती है।
3: जी बिल्कुल कुलदीप, और बात करें UG 218 किस्म के बारे में, तो ये किस्म किसान भाइयों जल्दी तैयार होने वाली किस्म

0: है जो 81 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये किस्म सम पर्वतीय और निचले पर्वतीय सम उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। इसको जैद फसल के रूप में गर्मी की ऋतु में सिंचित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, परंतु इसकी बिजाई मार्च के पहले पखवाड़े में कर देनी चाहिए। इसके पौधे बौने और लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। फलियां 3 से 5 के समूह में लगती है और प्रत्येक फली में 5 से 7 दाने होते हैं जो काफ़ी मोटे होते हैं। फलियों पर बाल होते हैं और ये किस्म पीली मोज़ेक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है और सर्कोस्पोरा पत्ता धब्बा बीमारी के लिए ये सहनशील है। इसकी उपज 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग किसान भाइयों आप ले सकते हैं
1: जी। साथ ही देखिए दिनेश, बात करें अगर पंत U19 की, तो ये किस्म जो है, ये किस्म भी हिमाचल प्रदेश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में हमारे किसान भाई लगाते हैं और अच्छी उपज इसकी आती है। ये किस्म लगभग 85 दिनों में तैयार हो जाती है और पीली मोज़ेक के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोधी किस्म इसे माना जाता है, परंतु पत्तों पर आने वाली बीमारियों के लिए ये माध्यमिक सहनशील होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर आप पंत U19 किस्म अपने खेतों में लगाते हैं तो पत्तों की बीमारियों के लिए ये इतनी सहनशील नहीं होती है। इसकी उपज की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी उपज ले सकते हो।
0: जी बिल्कुल। और किसान भाइयों, PDU1 किस्म भी आप लगा सकते हैं। ये मध्यम लंबाई वाली किस्म है और अधिक फैली हुई शाखाएँ, लंबी फलियां और मोटे दानों वाली ये किस्म है। ये मक्की के साथ अंत फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त है और केवल कुल्लू घाटी के लिए ये अनुमोदित की गई है। इसकी उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग किसान भाइयों आप ले सकते हैं
1: जी। साथ ही बात करें अगर हम पालमपुर 93 किस्म की, ये किस्म पिछले कई वर्षों से मौसम की घटती बढ़ती परिस्थितियों में भी एक समान पैदावार देखे देती आ रही है। ये किस्म कई बीमारियों जैसे कि सर्कोस्पोरा पत्ता धब्बा तथा चूर्णिल आसिता बीमारियों के लिए भी प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। ये कुल्लू मंडी तथा कांगड़ा जिलों के ऊपरी इलाकों के लिए भी उपयुक्त किस्म मानी जाती है। ये किस्म संगठित मध्यम ऊंचाई वाली और फलियों पर बाल वाली किस्म होती है। ये लगभग 85 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके दाने बड़े गहरे काले रंग वाले और सख्त नहीं होते हैं। ये पकने में बहुत अच्छी किस्म है तथा प्रोटीन की मात्रा की अगर हम बात करें इसमें, तो लगभग 26% के आसपास इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसकी उपज की जहां तक बात आती है, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी उपज ले सकते हो।
0: जी किसान भाइयों, दलहनी फसलों में बात करें मूंग के बारे में, तो इसकी अनुमोदित किस्में आप लगा सकते हैं सुकेती 1 किस्म और SML 668 किस्म आप लगा सकते हैं। सुकेती 1 किस्म के बारे में बात करें तो ये अधिक उपज देने वाली किस्म है जो एक समय पर पककर तैयार हो जाती है। इसकी कटाई एक समय पर की जा सकती है जबकि अन्य किस्मों में फलियां बार बार तोड़नी पड़ती है। ये किस्म किसान भाइयों पीली मोज़ेक के प्रति प्रतिरोधी है और पत्तों की बीमारियों के प्रति सहनशील है। ये लगभग 85 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज आप ले सकते हैं 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
1: जी। साथ ही बात करें मूंग की SML 667 किस्म की, तो मूंग की ये ग्रीष्मकालीन किस्म हिमाचल के सम पर्वतीय और निचले पर्वतीय सम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सिंचित क्षेत्रों में आलू या अदरक की फसल के साथ आप उगा सकते हो। इसकी फलियां लंबी गुच्छों में लगने वाली, दाने मोटे हल्के हरे तथा स्वादिष्ट होते हैं। ये किस्म लगभग 75 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। साथ ही देखिए दिनेश जी, बात कर लेते हैं कुल्थी की, तो कुल्थी में जो हमारे किसान भाई किस्में ले सकते हैं, उसमें ले सकते हैं बैजू और BLG1।
0: जी कुल्थी में अगर हम बात करें बैजू HPK 4 किस्म के बारे में, तो किसान भाइयों ये एक मध्यम फैलने वाली और जल्दी तैयार होने वाली किस्म है जो कि 110 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। ये किस्म बेल की तरह बढ़ती है और इसकी फली 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और प्रत्येक फली में 4 से 5 दाने होते हैं जिसका रंग गाढ़ा स्लेटी होता है और उन पर धब्बे होते हैं। इसके दाने गिरते नहीं हैं और ये रोग प्रतिरोधी किस्म है। ये उन सभी स्थानों के लिए उपयुक्त किस्म है जहां कुल्थी की खेती होती है और इसकी औसत उपज किसान भाइयों आप ले सकते हैं 17 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।

0: जी, साथी किसान भाइयों, कुलथी की दूसरी किस्म जो आप अपने खेतों में लगा सकते हैं वो है BLG 1। ये एक मध्यम फैलने वाली किस्म और जल्दी से तैयार होने वाली किस्म मानी जाती है, जो बेल की तरह बढ़ती है। इसमें लगभग 32 से 36 फलियां होती हैं। प्रत्येक फली में जो है किसान भाइयों, 4 से 5 दाने लगते हैं, जिनका रंग हल्का भूरा होता है। ये उन सभी स्थानों के लिए उपयुक्त किस्म है जहाँ पर हमारे किसान भाई कुलथी की खेती करते हैं। ये बैजू की तरह ही काफ़ी ज़्यादा रोग प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है।
1: जी किसान भाई, वो बात करें राजमाश के बारे में, तो राजमाश की उन्नत किस्मों में आप ले सकते हैं त्रिलोकी राजमाश, बासपा और कैलाश किस्में आप लगा सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें त्रिलोकी राजमाश के बारे में, तो इसकी बढ़ोतरी झाड़ियों की तरह बौनी होती है, पत्ते चौड़े गहरे हरे रंग के होते हैं। ये फसल 98 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। ये किस्म किसान भाइयों सभी क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किस्म है और ये जीवाणु झुलसा श्याम वर्ण और पत्तों का कोण धार धब्बा के प्रति रोग प्रतिरोधी किस्म है। इसकी औसत उपज किसान भाइयों आप ले सकते हैं 25 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
0: जी, साथ ही अगर दिनेश बात करें हम अपने किसान भाइयों के साथ राजमाश की बासपा किस्म की, तो ये मध्यम बौनी किस्म इसे माना जाता है, जिसे प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुमोदित किया गया है। इसमें श्यामवर्ण बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। इसके दाने गहरे गुलाबी रंग के, चितकबरे, सुंदर और मोटे होते हैं। पकाने में भी बहुत आसान होते हैं। ये लगभग 110 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी उपज की जहाँ तक बात आती है, लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास आप इसकी उपज ले सकते हो।
1: जी किसान भाई, वो बात करें कैलाश SRC 74 किस्म के बारे में, तो ये मध्यम बौनी झाड़ी नुमा परिमित बढ़वार वाली किस्म है, जो लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है। खास तौर पर ये किस्म किन्नौर जिला के लिए उपयुक्त किस्म है और इस जिले में इस किस्म को किसान भाइयों आप लगा सकते हैं। इस किस्म के पत्ते चौड़े और पीले से हरे रंग के होते हैं और हरी फलियों पर लाल धब्बे और सूखी फलियों पर नारंगी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस किस्म के दाने नारंगी चितकबरे रंग के होते हैं, जो बहुत बढ़िया पकते हैं। ये किस्म किन्नौर में लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के लगभग पैदावार देती है।
0: जी देखिए दिनेश जी, राजमाश के बाद किसान भाइयों बातचीत करना चाहेंगे अरहर की कुछ एक उन्नत किस्मों की। तो देखिए, अरहर की जो उन्नत किस्में आप लगा सकते हो उसमें आती है सरिता। पूरे हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती, अरहर की सरिता किस्म की खेती कर सकते हैं। अगर आप अरहर और गेहूं का फसल चक्र अपनाते हैं तो इसकी उपज अच्छी आती है। ये जल्दी तैयार होने वाली बौने किस्म मानी जाती है, जो लगभग 150 से 155 दिनों में तैयार हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के अगर हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, और पर्वतीय क्षेत्रों के शुष्क भागों के लिए भी ये उपयुक्त किस्म मानी जाती है। इसकी उपज की जहाँ तक बात आती है, लगभग 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप सरिता किस्म, जो अरहर की किस्म है, उसकी उपज ले सकते हो।
1: तो किसान भाइयों, ये तो रही कुछ एक जानकारी दलहनी फसलों की उन्नत किस्मों के बारे में। तो कुलदीप अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को सुनाएंगे एक लोकगीत।

0: तो किसान भाइयों, ये तो सुना आपने, समूह स्वरों में प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत। तो देखिए, दिनेश जी लोकगीत के बाद हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को इंतजार होगा एक और जानकारी का। तो आज हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए जानकारी लेकर आए हैं हाइड्रिंजिया, हिमाचल प्रदेश में नई पुष्पीय फसल, और हमें इस विषय में अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर बलबीर सिंह दिल्टा, और इनसे जानकारी हासिल करेंगी योगिता।
1: किसान भाइयों, आज स्टूडियोज में हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर बलवीर सिंह दिल्टा जी, जो कार्यक्रम कृषि जगत में हमारे साथ शामिल हुए हैं। और किसान भाइयों, डॉक्टर बलवीर सिंह दिल्टा जी हमें जानकारी देंगे हाइड्रेंजिया, हिमाचल प्रदेश में नई पुष्पीय फसल, इस विषय पर। तो किसान भाइयों, आइए बात करते हैं डॉक्टर बलवीर सिंह दिल्टा जी से। तो डॉक्टर बलवीर सिंह दिल्टा जी, कार्यक्रम कृषि जगत में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद। किसान भाइयों व बहनों, मैं नमन करता हूँ।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हाइड्रेंजिया पुष्प फसल क्या है?
2: हाइड्रेंजिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्पीय फसल है, और विशेषकर ये एक झाड़ी नुमा पुष्पीय फसल है, और विशेषकर जो हाइड्रेंजिया है इसको क्वीन ऑफ फ्लावरिंग श्रब्स भी बोलते हैं, यानी पुष्पीय झाड़ी नुमा पौधों की रानी के नाम से भी हाइड्रेंजिया को जाना जाता है। और हाइड्रेंजिया में इसके जो पुष्प है वो काफी बड़े आकार के रहते हैं, और इसके जो पुष्प है उनकी जो डिमांड है वो लगभग, जब जैसे हम कहते हैं कि जी अच्छे दिन विशेषकर जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार है, जैसे कि चैत्र नवरात्रे आते हैं, इसके बाद जैसे हमारे ईस्टर डे आते हैं, मदर डे आते हैं, इसमें इन फूलों की जो डिमांड है बहुत अधिक होती है, विशेषकर कटे फूल के लिए। लेकिन जैसे साज सज्जा के लिए यूज करते हैं हम इसको, या इसको हम एक पुष्पीय गमलीय पौधे के रूप में तैयार करते हैं, तो इसकी जो डिमांड है फिर वो वर्ष भर रहती है।
1: जी डॉक्टर बलवीर सिंह दिल्टा जी, आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को ये बताएं कि हाइड्रेंजिया जो पुष्प है, इसे हमारे किसानों और बागवानों को क्यों उगाना चाहिए?
2: ये अगर हाइड्रेंजिया किसान भाई बहन लगा रहे

0: तो इसको किन किन चीजों के लिए उगाया जा सकता है, क्यों किसान इनको उगाए। तो हाइड्रेंजिया जो है वो व्यावसायिक तौर पर अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसको कटे फूलों के लिए भी हम उगाते हैं,
1: जी
0: और इसको पुष्पीय गमलीय पौधे यानी फ्लावरिंग पॉटेड प्लांट जिनको कहते हैं, पुष्पीय गमलीय पौधों के लिए भी हाइड्रेंजिया जो है वो उगाया जाता है, बहुत डिमांड रहती है। और इसके अतिरिक्त साज सज्जा के लिए लाइव प्लांट्स के तौर पर भी इसको उगाया जाता है, एज ए हेज प्लांट भी इसको हम उगाते हैं, और कंटेनर प्लांट्स में भी उगाते हैं, मिक्स बॉर्डर्स के लिए भी उगाया जाता है, और वुडलैंड गार्डन्स में भी इसको उगाया जाता है, और जैसे बुके बनाने हो तो बेडिंग बुके विशेषकर इसके बहुत उत्तम प्रकार के बनाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे जो हाइड्रेंजिया है इसके फूल जो हम है वो सूखे फूलों के लिए भी, क्योंकि जो ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स हमारे बनते हैं उसके लिए हाइड्रेंजिया की जो है डिमांड जो है वो बहुत अधिक रहती है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब देखिए, जैसा कि आपने बताया कि हाइड्रेंजिया जो पुष्प है इसे हमारे किसान भाई गमलीय पौधे के रूप में उगा सकते हैं, और जैसे बुके वगैरह है या अन्य कार्य के लिए भी हाइड्रेंजिया को उगा सकते हैं। तो आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को ये बताइए कि हाइड्रेंजिया जो पुष्प है इसकी कितनी प्रजातियाँ हैं और इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हमारे किसान भाई उगा सकते हैं।
0: जी, हाइड्रेंजिया अगर हम देखें तो ये हाइड्रेंजियसी कुल का एक सदस्य है, और इसकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं वो काफी, इसमें वेरिएशंस है, काफी डाइवर्सिटी है, इसमें विभिन्नताएं हैं, और लगभग 70 से ऊपर किस्में इसके अंदर है। और थ्रू आउट विशेषकर जैसे हम ईस्टर्न एशिया की बात करें इसमें भी बहुत सी किस्में जो है वो, इसकी प्रजातियां जो है यहाँ पाई जाती है, और विशेषकर कुछ किस्में ऐसी है जो हिमालयी क्षेत्र इनमें भी पाई जाती है। और जहां तक रही कि भी इसकी कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो प्रजातियां हैं जो ज्यादातर लोग जो है जिनसे वाकिफ ज्यादा है, देखो
1: जी
0: एक ये चीज भी होती है कि भी हम देखें कि भी प्रजातियां हम अगर जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो हमारा कुछ और मकसद रहता है, किसान भाई लोगों के अंदर जिसका प्रचार प्रसार चलता है उनके हिसाब से क्या क्या प्रजातियां हैं। जो अगर आप कभी शिमला की हम बात करें, जैसे ओकओवर है हमारा, ओकओवर आपका आइडिया अगर सबको होगा हमारे किसान भाई बहनों को, तो वहाँ बिग लीफ हाइड्रेंजिया बोलते हैं उसको, बिग
1: जी
0: लीफ हाइड्रेंजिया
1: जी
0: मतलब हाइड्रेंजिया मैक्रोफाइला, और दूसरा नाम उसी का ही मॉप हेड हाइड्रेंजिया भी रहता है। इसके अतिरिक्त एक प्रजाति ऐसी भी है जिसको हम लेस केप हाइड्रेंजिया के नाम से जानते हैं, और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जैसे माउंटेन हाइड्रेंजिया है, और एक प्रजाति हाइड्रेंजिया की ये भी है जो पेनिकल हाइड्रेंजिया है,
1: जी
0: और एक है जैसे हम जो बान ब्रास के जंगल जहां पाए जाते हैं ओक लीफ हाइड्रेंजिया भी है, और स्मूथ हाइड्रेंजिया एक प्रजाति है इसकी। और इसके अतिरिक्त क्योंकि बेसिकली जो हाइड्रेंजिया का जो पौधा है एक विशेषकर झाड़ीनुमा पौधा है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जो लताओं के तौर पे भी जिसके पौधे तैयार किए जाते हैं, या छोटे और मध्यम आकार के पेड़ भी वृक्ष भी तैयार किए जाते हैं। तो इसकी प्रजातियां बहुत सारी है, और अगर हम बात करें कि भी इसकी कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो किसान भाई लोगों को लगानी चाहिए, और वो भी डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में लगा रहे हैं, और क्योंकि इसकी कुछ प्रजातियां ऐसी जो ठंडे क्षेत्रों में उगाई जा सकती है, कुछ ऐसी है जो थोड़े से मध्यम जो वातावरण है जो मतलब मिड हिल्स कंडीशन में वहां उगाई जा सकती है, कुछ प्रजातियां ऐसी है इसकी जो सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाई जा सकती है, और
1: जी
0: विशेषकर कुछ प्रजातियां ऐसी है जैसी एंडलेस समर है। अब क्योंकि इसमें जो भी किस्में इसकी बहुत ज्यादा प्रचलित है वो विदेशी किस्म है, विशेषकर नीदरलैंड्स के अंदर जो है इसकी जो ब्रीडिंग का काम है वो सबसे अधिक होता है, और वहीं से मैक्सिमम किस्में इसकी इंपोर्ट होती है। तो कुछ किस्में मैं अगर नाम बताऊंगा आपको उनके, जैसे एंडलेस समर है, मेराइट सुप्रीम पिंक है, लेडी इन रेड, ब्लूम स्ट्रक, ब्लशिंग ब्राइट, लेमन जेस्ट, फॉर एवर एंड एवर, ब्लू वेव, मून, ऑल समर ब्यूटी, क्रिस्टल पैलेस, टॉर्नेडो, मिडो, फायर, ओशन, सोलमेट, हवा पिंक, फेरी टेल ग्रीन, बहुत सी किस्में हैं। कुछ किस्में ऐसी है जिसमें बहुत बड़े आकार के फूल आते हैं, कुछ किस्में ऐसी है जो कटे फूलों के लिए बहुत उपयुक्त है, कुछ किस्में ऐसी है हाइड्रेंजिया की जो गमलीय पौधों के लिए बहुत अच्छी है, कुछ किस्में ऐसी है जो ड्राई फ्लावर्स के लिए अगर हमने उनका इस्तेमाल करना है उस चीज के लिए तो उनके लिए बहुत उपयुक्त।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि हाइड्रेंजिया जो है इसकी बहुत सी प्रजातियां हैं और इसकी बहुत सी किस्में जो है हमारे किसान और बागवान उगा सकते हैं। तो आप हमारे सारे किसान और बागवान भाई बहनों को ये बताएं कि इसमें जो है फूल किस समय लगते हैं।
0: जी, अडेंजिया जो है वो विशेषकर क्योंकि इसमें भी कुछ, क्योंकि एक तो ये जो

0: है वो ज़्यादातर ठंडे क्षेत्रों का जो ये पौधा है ठंडे क्षेत्र में ही पाया जाता है, और इसके लिए फोर्सिंग की जरूरत रहती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि भी सेब उसी इलाके में उगाया जाएगा जहाँ इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो। हाइड्रेंजिया के लिए भी इस तरह की फोर्सिंग की जरूरत होती है। तो जैसे ही समर सीजन शुरू होता है इसमें जो है वो फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है, और ये जून जुलाई तक जो है वो चलता रहता है फ्लावरिंग।
1: जी
0: फ्लावरिंग के समय की बात करें, और विशेषकर जो इसके अगर हम फूल है वो हमें जैसे चैत्र नवरात्र आएगा उसमें शुरू हो जाएंगे, और कुछ कुछ अगर आपने विदेशों में भेजना होगा तो ईस्टर फेस्टिवल आता है, और मदर डे होता है, ठीक है, फादर डे होता है, तो इसके लिए भी इन फूलों की जो डिमांड है वो अधिक रहती है। और इसलिए क्योंकि जब भी कोई पुष्पीय फसल आपने उगानी है तो सबसे अहम रोल ये रहना चाहिए कि आपका फूल जो है वो मार्केट के लिए तब तैयार हो जब मार्केट में उसकी डिमांड हो।
1: जी तो डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि ये हाइड्रेंजिया के जो फूल है किस मौसम में लगते हैं, तो आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को ये भी बताएं कि जो हाइड्रेंजिया का जो पुष्प है वो किस तरह की मिट्टी उसके लिए उपयुक्त होती है।
0: हाइड्रेंजिया जिस भी किसान भाई बहन ने लगाना हो, हाइड्रेंजिया के लिए ऐसा है कि इसको एक तो नमी युक्त मिट्टी, लेकिन वो इस तरह की मिट्टी हो जिसमें उचित जल निकासी भी हो,
1: जी
0: और वो जो मिट्टी है वो काफी फर्टाइल होनी चाहिए,
1: जी
0: फर्टिलिटी स्टेटस भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये पौधा जो है वो काफी जो है वो बढ़-बहार करता है, तो
1: जी
0: इसलिए इसको खाद पानी की भी आवश्यकता रहती है। लेकिन पानी नमी वहां रहनी चाहिए, और विशेषकर छायादार जगह ये ज्यादा पसंद करता है, और सुबह की धूप लगे बहुत अच्छा है, लेकिन 12-1-2 बजे के बाद की धूप सीधी इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। बहुत बड़े आकार का फूल इसमें आता है वो फिर जो है वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी मिट्टी की जहां तक बात की तो ये उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, और नमीयुक्त, नमी
1: जी
0: इसको बहुत।
1: जी
0: साथ ही एक मैं और भी इसमें कहना चाहता था कि जो मिट्टी है, मिट्टी का अगर आपने देखा हो तो मिट्टी का एक पीएच मान भी होता है। हाइड्रेंजिया जो है वो एसिडिक कंडीशन को ज्यादा पसंद करता है, इसकी जो मिट्टी है उसकी पीएच मान जो है वो लगभग 4.5 से 6.5 के बीच हो तो ज्यादा उपयुक्त माना जाता है हाइड्रेंजिया की उत्तम खेती के लिए।
1: जी तो डॉक्टर बलवीर सिंह दिल्टा जी, जैसा कि आपने बताया कि हाइड्रेंजिया का जो पुष्प होता है उसके लिए नमी की जगह की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि नमी वाली जगह में कई तरह के रोग और कीट हमारी फसलों में पनप जाते हैं, तो किस तरह के रोग इसमें पनप जाते हैं और हमारे किसान और बागवान भाई बहन इन रोगों और कीटों से कैसे बचाव कर सकते हैं?
0: जी अगर हम बात करें कि जी कुछ रोग भी इसमें आते हैं तो उनमें प्रमुख रूप से एक आती है जी एंथ्रेक्नोज के नाम से जानी जाती है, जो कि एक जो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है जो उस रोग को रोग के लिए जिम्मेवार है उसको बोलते हैं हम कोलेटोट्राइकम। और साथ में एक आता है पॉडरी मिल्ड्यू,
1: जी
0: जो एक धब्बे ऐसे पॉडरी मिल्ड्यू आप समझ रहे हैं कि जी भी
1: जी
0: पाउडर की तरह जो है उसके ऊपर जो है वो परत चढ़ती है। और एक रोग आता है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट,
1: जी
0: और विशेषकर ये जहां मॉइस्ट कंडीशन होती है सर्कोस्पोरा भी वहां आता है। और इनकी अगर हमने इन रोगों से बचाव करने जाना है पौधों को तो बड़ा साधारण सी बात है एक कि हम जो है इसमें डायथिन बेवेस्टिन जो है वो लगभग डायथिन हम यूज करते हैं 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और बेवेस्टिन मिलाते हैं उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब, मतलब 2 से 2.5 ग्राम डायथिन जमा करेंगे 1 ग्राम बेवेस्टिन,
1: जी
0: उसका स्प्रे कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर बलवीर सिंह दिल्टा जी, आप कार्यक्रम कृषि जगत में हमारे साथ शामिल हुए और आपने हाइड्रेंजिया हिमाचल प्रदेश में नई पुष्पीय फसल इस विषय पर हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन इस जानकारीपूर्ण बातचीत से अवश्य ही लाभ उठाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था हाइड्रेंजिया हिमाचल प्रदेश में नई पुष्पीय फसल। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर बलबीर सिंह दिल्टा, और उनके साथ बातचीत कर रहे थे योगिता। तो कुलदीप अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को कृष्णलाल सहगल की आवाज में सुनाएंगे एक और लोकगीत।

0: तो किसान और बागवान भाई बहनों, ये तो सुना आपने कृष्ण लाल सहगल की आवाज़ में प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत। तो देखिए दिनेश चलते चलते अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देना चाहेंगे कल के मुख्य मुख्य आकर्षणों की। तो कल काम की बातों के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे दुधारू पशुओं के विभिन्न रोगों के बारे में, और साथ ही साथ प्यारे प्यारे पहाड़ी लोकगीत भी हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए लेकर आएंगे, और एक जानकारीपूर्ण बातचीत भी हम अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को अपने इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे।
1: तो कुलदीप, इसी के साथ अब कृषि जगत कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुने जा सकते हैं।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश भर के 47 स्थानों पर कल रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास गतिविधियों पर की चर्चा। प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर भाजपा ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत, कल भी ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में सड़क निर्माण और इन्हें पक्का करने की नई तकनीक के बारे में जानकारी ली, ताकि इसे हिमाचल में भी उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोक निर्माण व शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर्नाटक में शहरी विकास व अधोसंरचना निर्माण में अपनाए जा रहे सफल मॉडल्स के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों व विकास कार्यों का दोनों सरकारें अध्ययन करेंगी। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि पूरे प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। हर्ष महाजन ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश बेहद निंदनीय है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की समीक्षा कर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन और प्रकाशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की चुनाव आयोग से मांग की है। इस बीच आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्याशी लोगों से अपने अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जिला सिरमौर में पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है और तीन राज्यों के साथ लगते इस जिले में बाहरी राज्यों से शराब तस्करी की संभावनाओं पर पुलिस

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी

0: कड़ी नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने कहा कि जिले के अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान सिरमौर जिला में करीब 500 पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे।
1: 26, 28 और 30 तारीख को पंचायत लेवल इलेक्शन होने हैं, तो हमने जो फोर्स की रिक्वायरमेंट दी थी वो फोर्स आने वाली है और साथ साथ हमें होमगार्ड के लोग भी इसमें डिप्यूट होंगे। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे नाकाबंदी रहेगी, रात को पेट्रोलिंग रहेगी और जैसे हमने राजगढ़ में भी हमने 140 पेटियां शराब की पकड़ी है, तो उसी तरीके से हमारे जो प्रयास है कि बाहर की शराब या कोई जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
0: पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के पास एक भी उपलब्धि बताने के लिए नहीं है। मंडी से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का खोखला नारा देने वाली इस सरकार की जनविरोधी नीतियों और गलत फैसलों से समाज का हर वर्ग त्रस्त है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी देने वाली कांग्रेस सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा दी जा रही फ्री बिजली भी छीन ली है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं के पैसे का दुरुपयोग कर उसे राज्य सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के झूठे प्रचार प्रसार में लगा रही है, जबकि प्रदेश की जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस बार जनगणना का काम डिजिटल तकनीक से किया जाएगा। इसमें लोगों को खुद अपनी गिनती करने और जानकारी भरने का मौका भी मिलेगा। शिमला स्थित जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश में जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण व मकानों की गणना 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 1 जून से 15 जून तक स्वगणना का कार्य किया जाएगा। इसमें लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। राजधानी शिमला में अवैध कब्जों और बदलती जनसांख्यिकी को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने आज राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। समिति ने आरोप लगाया कि शहर में तहबाजारी माफिया सक्रिय है और एक विशेष वर्ग द्वारा सुनियोजित तरीके से स्थायी कब्जे किए जा रहे हैं। समिति के संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि शिमला शहर की बदलती डेमोग्राफी प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने हिमाचल के लोगों को तहबाजारी में प्राथमिकता देने और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की राज्यपाल से मांग की है।
2: जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है वो हिमाचल प्रदेश के लिए हितकर नहीं है। यहाँ शिमला के अंदर तो एक वर्ग विशेष का तहबाजारी माफिया सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। तो नगर निगम की टीम शाम को 6-7 बजे उनको वहाँ से उठाने के लिए पहुंची तो वो नगर निगम की टीम को खुले तौर पे जान से मारने की धमकी और देख लेने की धमकी, इस तरीके की जो चीजें है वो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए माथे पे एक कलंक का टीका है। क्या ऐसे लोगों को तहबाजारी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? हमने यह जिला प्रशासन से भी यह मांग की थी, आज पुनः हम राज्यपाल महोदय के माध्यम से ये मांग दोबारा करना चाह रहे हैं।
0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि देश के औद्योगिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है जिसके चलते बेरोजगारी भी बढ़ रही है। विनय कुमार ने कहा कि देश में बढ़ते तेल व एलपीजी के मूल्यों ने देश को गंभीर संकट में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है। राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज हल्की वर्षा व हवाएं चलने से तापमान में मामूली गिरावट आई है जिससे लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिली है। कुल्लू में आज दोपहर तक जोरदार बारिश हुई जबकि रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आया है और कल भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। उन्होंने बताया कि 24 मई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा जिससे कई स्थानों पर तापमान बढ़ेगा।
3: बारिश की एक्टिविटीज है वो हिमाचल प्रदेश में 23 मई को लगभग अलग अलग स्थानों पर रुक रुक के हमें देखने को मिलती रहेंगी, जिनमें से मुख्य रूप से शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला है। वहाँ पे आज हमें कुछ एक स्थानों

0: ओलावृष्टि की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई है, जबकि कल 23 मई को भी हमें कुल्लू मंडी शिमला में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। 24 तारीख के बाद से बारिश की एक्टिविटीज में काफी ज्यादा कमी आएगी, हालांकि हायर हिल्स में बादल छाए रहेंगे।
1: आज जैव विविधता दिवस है, इस उपलक्ष्य पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिरमौर जिला के नाहन स्थित पीएम श्री कन्या पाठशाला में हिमजनक मंच संस्था और ज्ञान विज्ञान समिति ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने नारा लेखन, पेंटिंग और सामूहिक चर्चा जैसी प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिमजनक मंच संस्था के अध्यक्ष कंवर सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के महत्व को समझ सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर के 47 स्थानों पर कल रोजगार मेले का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास गतिविधियों पर की चर्चा। प्रदेश में लागू आचार संहिता के दौरान आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक पर भाजपा ने उठाए सवाल। चुनाव आयोग से फैसलों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा। और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से मिली राहत। कल भी ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का

0: वही है जो आज से अगर 90 वर्ष पहले हम बात करें तो शायद उस जमाने में भी, उस दौर में भी वही प्रासंगिकता उसकी उस वक्त भी रही होगी जो आज है। और इस सुविधा से जुड़े हुए जो विभिन्न लोग हैं, आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रसारण से जुड़े हुए एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं। आकाशवाणी रेडियो प्रसारण में एक जो आईना जिसको कहा जाता है वो होता है आकाशवाणी का उद्घोषक। और उद्घोषक होने के साथ साथ यदि बहुमुखी उसमें प्रतिभा हो, जैसे गायन में भी अगर वो पारंगत है, नाट्य विधा में भी पारंगत है, तो शायद एक उद्घोषक के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। जी हाँ, शायद हमारे बहुत से श्रोता समझ भी गए होंगे जब मैं बहुत सी बातें यानी इस तरह से परिचय जब करवा रहा हूँ तो शायद ये नाम अक्षर सिंह परमार ही हो सकता है, जिनका न केवल उद्घोषणाओं से बहुत गहरा नाता रहा, बहुत एक लंबा अनुभव रहा, हिमाचल के लोक संगीत से और नाट्य विधा से, मंचीय नाटक हो या रेडियो नाटक हो, आकाशवाणी के आप ए ग्रेड कलाकार हैं नाटक विधा में, बीहाई श्रेणी के कलाकार हैं लोक संगीत में भी। और आज जो अक्षर सिंह परमार के अनुभव रहे, आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम तमाम उन बातों को आज अपने श्रोताओं के साथ भी साझा करें कि ये एक व्यक्ति जो एक साधारण गांव से निकलकर शिमला में आए और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। परमार साहब, आकाशवाणी स्टूडियोज में आपका स्वागत।
1: नमस्कार डॉक्टर शर्मा, मेरा सब श्रोता साथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार, और मुझे आपने आज यहाँ आने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवादी हूँ।
0: परमार जी, बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन जी मेरा तहसील सरकाघाट, मेरा गाँव का नाम है बिद्रोही,
2: और बिद्रोही गाँव लगभग रिवालसर से कोई 20 किलोमीटर आगे है, बहुत इंटीरियर का गांव है। वहाँ से मैंने मिडिल किया
0: जी।
2: उसके बाद फिर मेरी सारी पढ़ाई बिलासपुर में हुई, ग्रेजुएशन तक। तो उस दौरान क्या था कि जब मैं बचपन में अपने गांव में रहता था तो हमारे यहाँ भी लोक संगीत की और लोक नाट्य की परंपरा रही है, जो मैं देखता रहा
0: जी,
2: ध्यान से देखता रहा। और उसके बाद जब मैं बिलासपुर आ गया तो थोड़ा मेरा सर्कल बढ़ गया, तो उसमें अब बिलासपुर का जैसे लोक नाट्य धाजा, उसको मुझे ध्यान से देखने का भी मौका मिला। फिर जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ दूसरे लोगों से जब परिचय होता है तो क्योंकि मेरा जो झुकाव था शुरू से ही वो लोक नाट्य और लोक संगीत की तरफ था, तो फिर मुझे वहाँ भी कुछ ऐसे दिग्गज लोग मिले जिन्होंने मुझे प्रेरित भी किया और शिक्षण प्रशिक्षण भी हुआ।
0: तो रेडियो की तरफ कैसे रुझान हुआ? और क्योंकि बचपन में तो जब आपका दौर रहा होगा
2: जी
0: का, तो उस वक्त तो रेडियो ही रेडियो था, और तो कोई दूसरी विधा शायद यही लोक नाट्य की जो आपने बात की
2: जी,
0: या
2: जी।
0: कोई लोक संगीत की सभाएं या कोई मेले त्योहार वगैरह में जो हमारे कुछ संगीत सभाएं होती थी वो होता था मनोरंजन का
2: जी जी।
0: लेकिन रेडियो का जो एक स्तर था उस दौर में क्या?
2: देखिए जी, स्कूल टाइम से ही मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था नाटक और संगीत में, चाहे वो मंची होता था तब, रेडियो तक तो हमारी पहुंच ही नहीं थी, तो हम मंची या फिर जैसे यूथ फेस्टिवल होने या कोई और उत्सव होने उनमें भाग लेना। तो ये बात है मेरे ख्याल 70 की बात है
0: जी,
2: तब मैं कॉलेज में था। तो एक फंक्शन हुआ तो हमारे यहीं बिलासपुर से हमारे एक सीनियर कोलीग थे शांति स्वरूप गौतम जी, वो उस फंक्शन को कवर करने गए हुए थे, वो मेरा एक गीत रिकॉर्ड करके ले आए
0: जी।
2: तब जहाँ आज इस स्टूडियो में हम बैठे हैं, उन दिनों ये स्टूडियो नहीं था, तो उन्होंने वो डिस्प्ले किया इधर, जब जो म्यूजिक के ज्ञाता लोग थे कि जी एक लड़का ऐसा भी है कॉलेज में जो गाता है, तो मुझे

0: ना किसी स्वर परीक्षा के ही आमंत्रित कर दिया गया
1: जी,
0: लोक संगीत के लिए। फिर वो मेरी शुरुआत थी।
1: आपने कहा कि उस दौर में स्टूडियो यहाँ नहीं था।
0: यहाँ नहीं था जी,
1: तो कहाँ था?
0: चैम्बर काउंसिल में था, उसको चैम्बर काउंसिल बोलते थे, जो विधानसभा है
1: वर्तमान में विधानसभा।
0: हाँ जी, जो वर्तमान में, उस वक्त भी विधानसभा थी वो
1: जी,
0: लेकिन उसका एक जो ग्राउंड फ्लोर है वो आकाशवाणी को, तो उसके 2-3-4 कमरे दे दिए गए थे। तो उसके एक तो मेन गेट है
1: जी,
0: एक ऊपर की तरफ से मेन गेट है जहाँ से हमारे गवर्नर साहब तशरीफ लाते हैं
1: जी,
0: एक नीचे की तरफ से भी गेट है, जो माल रोड वाली सड़क है उसकी तरफ से भी एक गेट है, वो हमारा सीढ़ियाँ होती थी। तो वहाँ पर अंदर छोटा एक स्टूडियो था, स्टाफ भी बहुत कम था। तो वहाँ से फिर मेरी शुरुआत 71 में वो सारा एपिसोड हुआ। फिर क्या हुआ, जब हिमाचल डे सेलिब्रेशन हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी आई
1: जी
0: यहाँ पर 71 में, 25 जनवरी 71 को, तो हमारी टीम जो थी अपने फोक डांस की और म्यूजिक की, ग्रुप सॉन्ग की, वो बिलासपुर कॉलेज से यहाँ भेजी गई।
1: जी
0: तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ गिर गई बर्फ बहुत ज्यादा, 100 किलोवाट का हमारा ट्रांसमीटर भी उसी दिन 25 जनवरी को ही लॉन्च हुआ,
1: जी
0: तो बर्फ इतनी ज्यादा गिर गई कि हम यहाँ हेल्ड अप हो गए। अच्छा, जब क्योंकि अब 100 किलोवाट का ट्रांसमीटर तो लग गया लेकिन अंदर बजाने के लिए कुछ भी नहीं था बहुत
1: जी
0: ज्यादा,
1: जी
0: तो इन्होंने क्या
1: रिकॉर्डिंग्स
0: किया,
1: वगैरह उस वक्त नहीं शुरू हुई थी बहुत ज्यादा।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जी
0: तो इन्होंने क्या किया कि जो ग्रुप्स आए हुए थे वो इन्होंने स्टूडियो बुलाए, क्योंकि हम हेल्ड अप हो गए यहाँ 4-5 दिनों के लिए बर्फ
1: जी
0: की वजह से। तो वो ग्रुप इन्होंने यहाँ आकाशवाणी, जो मैं बता रहा था आपको, काउंसिल चैम्बर विधानसभा वाला जो स्टूडियो था उसमें रिकॉर्डिंग हुई और काफी अच्छी रिकॉर्डिंग्स रही वो। तो उसके बाद फिर मैं लगातार आकाशवाणी से जुड़ गया, तो मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई और साथ साथ में ग्रेजुएशन तक 2-3 बार 4 बार लोक संगीत गाने के लिए भी मैं आता रहा। उसके बाद जब मैं यहाँ इसमें लॉ में मैंने एडमिशन लिया, तो मेरा रुझान क्योंकि नाटकों की तरफ बहुत था, इन बिटवीन मैं कोई एक दो बार तो मैं बेस्ट एक्टर भी रहा इंटर यूनिवर्सिटी में
1: जी
0: स्टे का। तो जब मैं शिमला आया तो मेरा रुझान थोड़ा झुकाव नाटक की तरफ ही हुआ, तो मेरा अप्रूवल एज नाटक कलाकार भी यहाँ से आकाशवाणी शिमला से हो गया। फिर मेरा कार्यक्रम चलता रहा जी आगे, लेकिन मैं अब बात चली है तो मैं थोड़ा सा ये निवेदन करूँ कि जो अधिकारी लोग थे या जो इंचार्ज लोग थे वो टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड थे।
1: जी
0: अब जैसे एजुकेशन का हमारा एक सेक्शन है, उसमें केवल वही लोग अधिकारी बनते थे जो टेक्निकली क्वालिफाइड हों, MEd हों, BEd हों, टीचर रहे हों। तो इस तरह से म्यूजिक का भी ऐसा ही था, तो वो लोग बहुत सूझबूझ से, और मतलब यहाँ परफॉर्मेंस तो अलग चीज़ थी लेकिन एक क्लास भी थी, सीखने और सिखाने का काम भी बहुत पक्के तौर पर होता था। तो उसके बाद जी फिर मेरा कार्यक्रम चलता रहा, उसमें भी मुझे मेरा शौक बढ़ता रहा, हालांकि मेरा ट्रेड यहाँ ज्वाइन करने का नहीं था, मैं जाना चाहता था नेवी में। नेवी का मैंने कॉलेज टाइम का NCC का B सर्टिफिकेट किया था, C सर्टिफिकेट मैंने करना था और सीधा कमीशन जाना था,
1: जी
0: लेकिन भाग्य की बात यह है, ये समझिए कि वो फिर हाथ की लकीरों का भी और माथे की लकीरों का भी असर होता है, तो मेरा रुझान इस तरफ बढ़ गया और फिर मैं कैजुअल अनाउंसर भी यहाँ अपॉइंट हो गया कैजुअली। तो जब पोस्टें यहाँ पर एज अनाउंसर आई, क्योंकि हमारा तो ऑल इंडिया लेवल का कॉन्टेस्ट होता है,
1: जी
0: काफ़ी लोग आए थे जब यहाँ हमारी वो प्रतिस्पर्धा हुई इसकी अनाउंसर की, तो तब फिर मेरी सिलेक्शन हो गई।
1: जी तो जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते थे, जैसे आपने कहा कि शुरुआती दौर में तो मंचीय प्रदर्शन होते थे
0: हाँ जी
1: और उसके बाद एक रेडियो आर्टिस्ट बन जाना, तो उन दोनों में कुछ आपको फर्क महसूस हुआ कि अब मैं रेडियो पर नाटक भी कर रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, उद्घोषणाएं भी कर रहा हूँ, तो इन दोनों में कुछ फर्क आपको लगा?
0: डॉक्टर शर्मा, मैं आपको बात बताऊं कि रेडियो में जब मैं आ गया तो मुझे अपने मंचीय गतिविधियों से थोड़ा सा हटना पड़ा। कारण ये था कि हमारी दिन रात की, आपको तो पता ही है, दिन रात की ड्यूटी, फिर रिहर्सल भी, उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है ना मंच के कार्यक्रम के लिए, तो वो मेरे से थोड़ा सा छूट गया वो पक्ष। लेकिन हालांकि मैंने उसमें भी, चाहे वो हमारी भाषा अकादमी का प्रोजेक्ट था या कोई और प्रोजेक्ट थे, उनमें मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मंच पर भी। फिर तो रेडियो का तो जब ये सोच लिया कि अब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ,
1: जी
0: तो फिर तो मैं एक विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी हूँ, आज भी हूँ, और मुझे अब भी कोई सीखने की अगर कोई चीज़ मेरी नज़र से गुजरती है तो मैं उसको पकड़ने के बगैर छोड़ता नहीं।
1: तो जब आप रेडियो से बाहर निकलते थे,
0: हाँ
1: कभी
0: जी
1: मेलों वगैरह पे जाना होता था, वहाँ परफॉर्म करना होता था, तो लोग किस तरह से आपसे मिलते थे कि ये वही है जो रेडियो में अक्षर सिंह परमार आते हैं, जो गाते हैं,
0: नहीं, थोड़ा
1: जो बोलते हैं?
0: हैरानी से पेश आते, अच्छा ये है वो,
1: जी,
0: तो मैं सोचता था भी शायद मेरे कोई, जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ या जो प्रशिक्षण चला हुआ है, जो मेरा सीखने सिखाने का जो मेरा काम चला हुआ है, वो शायद थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आता हो।
1: तो जब आप शुरुआती दौर में रेडियो में आए तो कैसा था रेडियो का वो दौर
0: हाँ
1: लोगों में?
0: हाँ मैं बताता हूँ आपको, पहले तो मैनुअल होता था, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी।

0: हालांकि जब मैं आया तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले के जो मेरे सीनियर्स थे वो मुझे बड़ी बड़ी डिस्कें दिखाते थे, बड़े बड़े तवे जिसको हम बोलते थे, तो
1: जी
0: वो स्टूडियो में उनको रिकॉर्ड किया जाता था। बाकी रिकॉर्डिंग का कोई प्रावधान था ही नहीं, सब आमने सामने बैठ के
1: लाइव
0: बिल्कुल।
1: होता था,
0: हाँ जी,
1: मतलब
0: लाइव,
1: सजीव प्रसारण है।
0: टोटल लाइव। उसके बाद जब मैं आया तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी, टेप थे हमारे पास, आधे घंटे का भी था, घंटे का भी था, तो उस पर रिकॉर्डिंग्स शुरू हो चुकी थी, मशीनें इंस्टॉल हो चुकी थी। उसके बाद देखते ही देखते फिर तो, अब तो देखिए आप क्या क्या हो गया,
1: जी
0: अब तो कंप्यूटर आ गया, डिजिटल आ गया, सीडीज बन गई, सीडीज का दौर हुआ शुरू टेप के बाद,
1: जी
0: और उसके बाद फिर अब तो कंप्यूटर पर सारा कुछ लोड कर सकते हैं आप,
1: जी
0: एक बटन दबाओ तो पूरा कंप्यूटर आपको बता देगा इस मेरे पेट में क्या
1: जी
0: है।
1: अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है।
0: हाँ जी,
1: तो परमार साहब, जब आप बहुत छोटे थे
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: अब रेडियो सुनना कब से शुरू किया आपने?
0: रेडियो जी, हमारे तो बहुत लेट रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ गांव में, मतलब मैं उस वक्त कोई 10-12 साल का रहा हूँगा जी,
1: जी
0: इससे पहले मैंने रेडियो नहीं सुना था। हमारे एक फौज में भाई थे, सूबेदार थे, वो कांगो की लड़ाई लड़के आए थे,
1: जी
0: तो वहाँ से वो एक रेडियो लाए थे ट्रांजिस्टर, तो वो जब घर में बजना शुरू हुआ तब हमने सोचना, यार ये कमाल है, देखो ये इतना सा बक्सा और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, तो तब से फिर हैरानी जैसी थोड़ी शुरू हुई। तो खैर फिर धीरे धीरे, तो फिर जब मैं वहाँ से निकल आया, फिर तो मैं बिलासपुर जब आ गया, तो फिर तो कोई ऐसी अचंभे वाली बात ही नहीं थी हमारे लिए।
1: जी तो अगर हम माने तो लगभग 65-70 साल पहले आपने रेडियो सुनना शुरू कर दिया
0: हाँ
1: था,
0: जी,
1: और कहें तो उस दौरान तो एक रेडियो की एक शिशु काल ही था, रेडियो का एक हम कहें कि शुरुआती दौर ही
0: हाँ
1: था।
0: जी, हाँ
1: जब
0: जी,
1: हम 90 साल की
0: हाँ
1: बात
0: हाँ
1: कर
0: हाँ
1: रहे
0: हाँ
1: हैं
0: जी जी
1: कि 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं प्रसारण के,
0: हाँ जी,
1: तो फिर आपने अनुभव ये भी बताया कि
0: हाँ जी
1: एक जो रेडियो का जो कलाकार होता था ना
0: जी
1: पुराने दौर में,
0: जी
1: उसको एक अलग नजरिए से देखते थे लोग। वो सोचते थे कि यार ये रेडियो में बोलते हैं, रेडियो में गाते हैं।
0: डॉक्टर शर्मा, पहली बात तो ये थी कि इसका नाम था आकाशवाणी,
1: जी
0: इसको धरती की वस्तु ही नहीं माना जाता था, जो हम कुछ बोलते थे या सुनते थे, ये तो ऐसा लगता आकाश से कोई बात हो रही है, तो वो फिर वो तो थी भी बात सच्ची, अब वो तो हवाई मार्ग से ही होता था प्रसारण।
1: जी
0: तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की जो लर्निंग हुई उसमें, हमारे जो न्यूज़ रीडर थे हिंदी के खासकर, जैसे देवकीनंदन पांडे जी, तो अगर हम किसी शब्द पर अड़ जाते थे, फंस जाते थे, तो हम सोचते थे पांडे जी तो न्यूज़ पढ़ेंगे, तब वो कहीं ना कहीं तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो
1: जी
0: उनसे सीख लेंगे भी कैसे बोलते हैं। मतलब लर्निंग की मैं बात बता रहा हूँ कि कितनी पर्टिकुलर, खास तौर पर एक नपीतुली एक मेंटेलिटी होती है, मतलब एक भावना होती है कि कोई चीज़ छूटे ना सीखने से।
1: जी
0: तो बस फिर आप साथी भी जुड़ गए बीच में, तो मेरा कोशिश ये रही कि हाँ, यहाँ मुझे थोड़ा सा कहते हुए अच्छा भी लग रहा है, लेकिन थोड़ी मैं ये अब कमी भी महसूस करता रहा कि मैंने आकाशवाणी से सिर्फ शास्त्रीय संगीत नहीं गाया, बाकी जो विधाएं यहाँ पर चाहिए होती हैं वो मैंने सब।
1: जी और एक दौर वो भी तो था ना कि रेडियो की, जो जैसे आपने अभी देवकीनंदन पांडे जी की बात की,
0: जी,
1: या ब्रॉडकास्टिंग में और भी बहुत से
0: बहुत से लोग,
1: धुरंधर लोग हुए
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ
1: और
0: बिल्कुल,
1: जिनको सुनकर हम अपनी भाषा का सुधार करते थे, एक वो
0: हाँ
1: दौर भी तो था ना।
0: वो ये, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम लर्निंग बहुत थी, मैं नहीं समझता आज कितनी लर्निंग हम दे सकते या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या शब्दों का चयन कैसे करना है, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों के लिए बहुत संभल के बोलने की आवश्यकता होती है, थी तो
1: जी
0: थी पर है भी। तो मैं तो आज भी यही कहूँगा कि 90 साल के इस सफर में अगर हम आज भी अपनी लर्निंग को बरकरार रखें, जो खासकर जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं रेडियो से, क्योंकि जो हमारी आज जो भाषाई दृष्टिकोण है
1: जी
0: वो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया हुआ है कि अगर हम बोलने के लिए ही प्रयत्न करें, कितने तो डॉक्टर शर्मा टीवी चैनल है, रेडियो चैनल है, और अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपकी कदर होती है,
1: जी
0: तब आपको कोई ऐसा दरकिनार नहीं कर सकता किसी भी। हाँ ये है कि जिस भाषा को हम अपनाएं उस भाषा के प्रति हम समर्पित रहें, उच्चारण के प्रति समर्पित रहें, उसके उतार चढ़ाव के, उसके ठहराव पे हम कितना काम कर सकते हैं वो जरूर ध्यान रखना चाहिए।
1: हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे जो रेडियो प्रसारण और स्पेशली हम आकाशवाणी शिमला की बात करेंगे,
0: जी
1: क्या योगदान रहा लोगों के मनोरंजन की बात हो या सूचनाओं की बात हो, ओवरऑल एक रेडियो का जो प्रसारण रहा है आकाशवाणी शिमला का?
0: देखिए जी, मैं बताऊंगा आपको कि आकाशवाणी शिमला ने इतना बड़ा काम किया है, ये हमारे दूसरे स्टेशन तो बड़ी देर से खुले, जैसे धर्मशाला है, हमीरपुर है, रिकांगपिओ रिले करता है शिमला को, कुल्लू रिले करता है, लेकिन जो अब

0: नेटवर्क हमारा इस वक्त काम कर रहा है, वो मुझे तो हैरानी होती है कि आज भी मुझे लोग मिलते हैं, तो चाहे वो किन्नौर के रहने वाले हों चाहे कहीं के भी हों, तो वो रेफरेंस देते हैं बाकायदा कि ये बात हमने रेडियो से सुनी है। तो इसका मतलब कि रेडियो अब भी, उसकी भी अब वही अहमियत है, खासकर हमारे दूरदराज क्षेत्रों में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये आगे भी बढ़ना चाहिए, खासकर मनोरंजन और सूचना का जो हमारा काम है उस पर तो कोई रोक टोक होनी ही नहीं चाहिए।
1: जी अच्छा सिंह परमार जी, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आए और आपने तमाम जो आपके अनुभव रहे रेडियो के साथ आपने हमारे श्रोताओं से साझा किए। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा, आपने मुझे मौका दिया तो मैं आया, धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक श्री अक्षर सिंह परमार से भेंट वार्ता। भेंट करता थे डॉक्टर हुकम शर्मा। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं FM शिमला के साथ।
4: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
5: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
4: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
5: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
5: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
4: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
5: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
4: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप FM शिमला के साथ, और इस वक्त FM शिमला पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। म्यूजिक तो सभी को पसंद होता है, लेकिन चॉइस अलग हो सकती है। जैसे किसी को स्लो तो किसी को फास्ट म्यूजिक पसंद होता है, लेकिन पसंद ज़रूर होता है। अगर हम काम करते हुए गीत सुने तो काम आसानी से जल्दी भी हो जाता है। वैसे ही ट्रैवलिंग करते हुए भी अगर गाने सुन रहे हो तो सफ़र का आनंद दुगुना हो जाता है। तो क्यों ना अभी आपका जो सफ़र है आसान करें गीत सुनवाते सुनवाते। चरित्रहीन फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: सभी लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन सभी का सपना एक घर का जरूर होता है। एक जिंदगी मिलती है तो सभी चाहते हैं इसी में हर चीज मिले उन्हें, जैसे अपना प्यार, घर, फैमिली। और जिनको ये सब मिलते हैं तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे, जो है उसे संभाल कर रखें और अपनी लाइफ एंजॉय करें। जो जितना मिला है उसी में खुश रहें।

0: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व पंचायत चुनाव 2026।
1: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
0: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
2: अभी आपने सुना था हमराज फिल्म का गीत, महेंद्र कपूर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। दिन जैसे जैसे ढलता है वैसे ही हमें याद आने लगता है अपना घर और अपना प्यार। दिन भर की भाग दौड़ के बाद यही बस वो पल होते हैं जो हमें सुकून से बिताते हैं हमारे अपनों के साथ। अगर हम ढूंढें तो छोटी छोटी चीज़ों, बातों में भी हम खुश हो सकते हैं। बस मन में होनी चाहिए थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा ठहराव। हिमालय की गोद में फिल्म से आपके लिए गाना लेकर आए हैं मुकेश की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: हमें जो अच्छा लगता है फिर वो चाहे जैसा भी हो, हमें वो भाता ही है। तभी तो गीत भी ऐसे बनते हैं जो हमारे मन के भाव होते हैं। आनंद आश्रम फिल्म का गीत आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ में, इंदीवर के बोल श्यामलाल मित्रा का संगीत।

0: भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या 9 बजे न्यूज़ @9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मैं हूं आपके साथ ऋचा शर्मा। फिल्में हम सभी देखते हैं, इनके माध्यम से हमें जीवन की सच्चाई, दोस्ती, प्यार और संघर्ष का गहरा संदेश मिलता है। मुश्किल सिचुएशन का सामना करने और कभी हार ना मानने वाले मोटिवेशनल डायलॉग्स का भी हम इनको देखकर यूज कर सकते हैं। आज हम आपको सुनवाएंगे 1996 में रिलीज हुई फिल्म चाहत के गीत।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: मुख्य भूमिकाओं में शाहरुख खान, पूजा भट्ट, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और साथी कलाकार थे। फिल्म में गीत लिखे निदा फाजली ने, संगीत अनु मलिक का था। गीतों में आवाजें थी अलका याग्निक, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और विनोद राठौर की। आपको ये भी बताएं कि शाहरुख खान और महेश भट्ट की ये एक साथ पहली फिल्म थी। इस फिल्म के गाने तो सभी अच्छे थे, लेकिन कुमार सानू की आवाज़ में जो गाना सबसे ज़्यादा हिट हुआ था वो था ये गीत।

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: हाय, हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए।
1: एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आज आप सुने सुने चाहत फिल्म के गीत। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप FM शिमला के साथ। अब आपको सुनवाते हैं दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। गीतों को अगर हम ध्यान से सुने तो सच में ये हमारे जो मन में चल रहा होता है वही बन जाते हैं गीत। खिलाड़ी फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं अभिजीत और अलका।

कभी कभी हम किसी से इतने नाराज हो जाते हैं कि उनसे बात भी नहीं करते। अक्सर गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा पछतावे में ही बदलते हैं। सोच समझकर बोलने से तो बिखरे रिश्ते भी संवर जाते हैं। सब्र वो ताकत है जिससे बुरे हालात भी संभल जाते हैं। बेवफा फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं अभिजीत की आवाज़ में।

सबसे मुश्किल काम है अपने मन को समझाना, तमाम बातों को दिल में छिपाकर झूठ मूठ का मुस्कुराना, भीड़ में भी तन्हा होकर खामोशी से रिश्ता निभाना, तमाम जख्मों के बाद भी हर वक्त खुश रहना, यही है हमारी जिंदगी का फसाना। खूबसूरत फिल्म का गीत आपके लिए लेकर आए हैं अभिजीत और नीरजा पंडित की आवाज़ में, गुलजार के बोल जतिन ललित का संगीत।

सच्ची मोहब्बत फासलों की मोहताज नहीं होती। पास होना या साथ रहना तो सिर्फ दुनिया के दस्तूर हैं। जो दिलों में बस जाते हैं वो दूर रहकर भी धड़कन में धड़कते हैं। यलगार फिल्म का गीत उदित नारायण, सपना मुखर्जी की आवाज़ों में।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

कई बार जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि समझ में नहीं आता कि अब क्या करें और क्या ना करें, तो याद आते हैं कई फिल्मी डायलॉग कि मेहनत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। विवाह फिल्म का गीत अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

दिल की आवाज़ भी सुन में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 10 बज चुके हैं, अब आप लुत्फ़ उठाएंगे गज़लों का।

तेरे साथ को तरसे, तेरी बातों को तरसे, ये कैसी दोस्ती रही हमेरे यार, तेरे होकर भी तेरी एक मुलाकात को तरसे।

0: वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल के किसी कोने में हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। वो यादें ना बोझ बनती हैं ना आंखों को नम करती हैं, बल्कि अकेलेपन में भी साथ निभा जाती हैं।
1: सरकती जाए सरकती।

पे मुझे एक लतीफा याद आ गया है। इसी तरह एक गाना चल रहा था कहीं पे, तो एक शेर पे मुकर्रर की आवाज आई,

0: गजलों का लुत्फ अभी आप उठा रहे थे एफएम शिमला के साथ।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
0: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम शिमला के साथ 10:30 हो चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं हम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत प्रेम नगर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल एसडी बर्मन का संगीत।

किसी के लिए पूर्ण समर्पित हो जाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा शख्स ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। जगजीत सिंह की आवाज में आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत फिल्म का गीत, इंदीवर के बोल जगजीत सिंह का संगीत।

कालिया फिल्म का गीत आपने अभी सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में गुलशन बावरा के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसे आपस में लड़कर एक दूसरे को दुख देकर हमें नहीं गुजारनी है, क्योंकि नाराज़गी बहुत कोमल होती है, अपनत्व का स्पर्श मिलते ही ख़त्म हो जाती है। गीत फिल्म का गीत लेकर आपके लिए आए हैं लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

सदाबहार नगमे अभी आप सुन रहे थे एफएम शिमला के साथ। 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग

0: और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference,